मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच की ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 24वीं तिथि। तदनुसार 15 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मत्स्य व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन

0: परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

मानव का शरीर ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है और संतों की संगत से इस मानव जीवन को पवित्र किया जा सकता है। सज्जनों की संगत करके ये जीवन असहायों की मदद और उनकी भलाई में लगाना चाहिए। यही तो ईश्वर की आराधना है, इसी में मानव जीवन का कल्याण है।

ऐसी कला है जो हमें एक सूत्र में बांध देती है। हमारे हृदय में प्रवाहित ये एक ऐसी अविरल धारा है जो सर्वदा रहती है। इसी प्रेम के वशीभूत तो भगवान भी हैं। हम उनकी आराधना से अपने मन को पवित्र बनाते हैं। ऐसे में हम क्यों ना उस हर चीज से प्रेम करें जिसे उस रचनाकार ने बनाया है, और हर एक में उसके विराट स्वरूप को देखें, हर एक से प्रेम करें। यही तो सच्ची भक्ति है।

धरती की प्यास बुझाती बरखा की ठंडी फुहारों से प्रेम रूपी अमृत छलकता है। मीठे वचनों की वाणी भी कुछ ऐसी ही है जो हरेक के मन में सीधी उतर जाती है और अपना प्रभाव बनाती है। ऐसे वचन सकारात्मक प्रभाव रखते हैं, जबकि कटु वचन मन को दुखी करते हैं। इससे पहले हम कुछ बोलें, पहले सोच लेना ही उचित है।

जीवन अनमोल है, इसे संभालना, समय समय पर इसका अवलोकन करना भी आवश्यक है। जीवन में दुखों के बादल छाते हैं तो सुखों की वर्षा भी होती है। मुश्किल की घड़ी में धैर्य ही सच्चा मित्र होता है। जो व्यक्ति मुश्किलों से घबरा जाते हैं उनकी हार होती है, और जो इसका सामना करते हैं उनकी जीत निश्चित है। समय कभी एक सा नहीं होता। इसके दामन में अगर कांटे हैं तो फूलों की सुगंध भी है।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज आपने समूह स्वर में देशभक्तिपूर्ण रचना के पश्चात सुमन कल्याणपुर, साधना सरगम वसाथी, पंडित डीवी पलुस्कर और महेंद्र कपूर के गाए भजन सुने। अब आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। स्वर है वाणी जयराम का, संगीत सतीश भाटिया का।

मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित्र सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य अतिशय प्रेरित हुए, बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती उन्हें श्री राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। स्वर था वाणी जयराम का, संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, विषय है संस्कार, आलेख डॉक्टर पुरुषोत्तम चक्रवर्ती का है।
1: संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति सम धन कृ धन धज से हुई है।

0: सम माने संवारना, कृत कृति माने हम जो कुछ करते हैं। अतः संस्कार का अर्थ है अच्छा करना, शुद्ध करना, संवारना, सुंदर बनाना। दोषों को दूर करके मनुष्य में सद्गुणों का विकास और संवर्धन करने वाली प्रक्रियाएं ही संस्कार हैं। भारतीय वेद संस्कृति में सारे क्रियाकलापों, सारे आयोजन धार्मिक कार्य बनाकर ईश्वर प्राप्ति के महत्व उद्देश्य से जोड़ दिए गए थे। आत्मा ईश्वर का अंश है, पर जीव स्वभाव से ही दोषयुक्त है। परमात्मा का अंश होने के कारण शुद्ध बुद्ध चैतन्य होते हुए भी जीव धरती पर जन्म लेने के साथ ही माया के जाल में उलझकर नाना प्रकार के दोषों, काम, क्रोध, लोभ, मेरु, अमर्ष, मद आदि से युक्त हो जाता है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में कहा है, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। संस्कार जीव को परिष्कृत कर देते हैं। जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। संस्कार मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति बताते हैं। उनका उद्देश्य केवल देह का औपचारिक निखार करना ही नहीं है, वरन व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का परिष्कार कर उसे शुद्धि और पूर्णता प्रदान करना है। बाबा देवहरा के शब्दों में कहें तो फूलों में जो स्थान सुगंध का है, फलों में जो स्थान मिठास का है, भोजन में जो स्थान स्वाद का है, ठीक वही स्थान जीवन में संस्कारों का है। माता के गर्भ से जन्म लेने के साथ ही शिशु अपने साथ दो प्रकार के संस्कार लेकर आता है। एक जन्म जन्मांतर के संस्कार, दूसरे माता पिता से अनुवांशिकी के तहत प्राप्त वंशगत संस्कार। मनुस्मृति के अनुसार संस्कारों के द्वारा गर्भ बीजगत और गर्भगत दोनों प्रकार के दोषों का निवारण किया जा सकता है। जन्म के साथ मिलने वाले संस्कार अच्छे या बुरे दोनों हो सकते हैं। अनुवांशिकी संतति के प्रत्येक लक्षण, गुण, अवगुण, क्षमता, अक्षमता आदि जन्मजात गुणों के लिए माता पिता से प्राप्त जीन के जोड़ों को उत्तरदायी मानती है। प्रत्येक जोड़े में एक जीन पिता से और दूसरा माता से आता है। जीन प्रभावी अथवा प्रभावी हो सकता है। प्रभावी जीन के लक्षण उजागर हो जाते हैं और अप्रभावी जीन के लक्षण छिपे रहते हैं। बालक का प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश जिसमें वह जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, वो जमीन तैयार करता है कि कौन से गुण बीज प्रभावी होकर अंकुरित हों और कौन से बीज अप्रभावी रूप में पड़े रहें। संस्कार वह परवरिश है जो सद्गुणों को प्रभावी बनाकर पल्लवित पुष्पित करते हैं। भावी पीढ़ी के निर्णय के लिए जरूरी है कि हम आज की भागम भाग जिंदगी की व्यस्तताओं से समय निकालकर अपने बच्चों को वो परिवेश प्रदान करें जिसमें सुसंस्कार फलें और फूलें।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था संस्कार, आलेख डॉक्टर पुरुषोत्तम चक्रवर्ती का था। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है एकीकृत कृषि प्रणाली। वार्ताकार हैं डॉक्टर रूपेंद्र खांडवे।
1: किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में जो हम बातचीत करना चाह रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे प्रदेश के लिए कि एकीकृत कृषि प्रणाली क्या करते हैं। कृषि फसलों के साथ साथ हम दूसरे उसके जो घटक हैं उनको भी लेते हैं। उसमें मुख्यतः जैसे अभी पशुपालन है, बकरी पालन है, उद्यानिकी वाले वृक्षों का समावेश करें, मत्स्य पालन है और कृषि वानिकी वाले वृक्षों का। तो अब जैसे इसको अगर हमको करना है तो किसान

0: भाइयों को ये करना चाहिए कि मान लीजिए आपके पास 7-8 बीघा भी जमीन है, तो आप 1 बीघा में 2 बीघा में ऐसी खेती करें जिन पे इन सब सारे घटकों को आप उनका समायोजन करें, जिसमें क्या होगा कि आप कम जगह में और ज़्यादा से ज़्यादा फसलों की सघनता बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा किसी न किसी घटक से हमको लगातार एक आय प्राप्त होती रहेगी। और जो स्थिति अभी हमारी हो रही है, अभी हमने क्या किया कि पशुपालन और इन चीज़ों को एकदम अलग कर दिया है, केवल हम कृषि फसल ले रहे हैं। हमारा मुख्यतः क्या है कि हम खरीफ में सोयाबीन की फसल लेते हैं और उसके बाद हम गेहूं की फसल लेते हैं। ये ज़्यादातर हमारे यहाँ का मुख्य मतलब किसानों का फसल चक्र है। पर हमें क्या है कि इस तरीके से अगर हम खेती करते रहे तो जो हमारी खेती है कुछ दिनों में हम देखते जा रहे हैं उसमें लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही। क्यों? क्योंकि फसल हमारी एक सी है, उर्वरक हमारा एक सा है, तो नई नई बीमारियां आती जा रही हैं। जैसे पहले हम देखते थे कि कई फसलों में, जैसे गेहूं की फसल ले लें तो गेहूं की फसल में कीट का नियंत्रण नहीं करना पड़ता था, पर अब धीरे धीरे वो भी समस्या आने लगी। तो जब हम दूसरे घटक उसके मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो जमीन है उसकी उर्वरा शक्ति को भी हम बढ़ा सकते हैं, और अलग अलग घटकों को अपनाने से एक घटक से निकला हुआ जो अवशेष है या अपशिष्ट है वो दूसरे घटक के लिए उसका एक बहुत अच्छा संसाधन बन जाता है। तो उस संसाधन से क्या होता है कि तो आपका खर्चा बहुत कम हो जाता है, और वो संसाधन उस घटक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिससे उसका उत्पादन हमें अच्छा मिलता है। जैसे अब एक उदाहरण के तौर पे लें कि हमने एक मतलब मछली के लिए तालाब भी बनाया, उसके ऊपर हमने एक लोहे का या जाला लगा के हम उसके ऊपर मुर्गी पालन करते हैं, तो मुर्गी पालन से जो उसकी अपशिष्ट निकलते हैं वो मछली पालन के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार अगर हमने डेयरी भी रखी वहाँ से, तो डेयरी का भी जो पानी आ रहा है वो भी अगर तालाब में आएगा तो वो भी मछली पालन के लिए बड़ा वो होता है। और इस पानी को जब हम 1 महीने या 2 महीने में कृषि फसलों में छोड़ देते हैं तो उससे कृषि फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक घटक का जो भी अपशिष्ट निकला वो दूसरे घटक के लिए एक बहुत अच्छा संसाधन मिला, तो उसमें खर्चा कम होता है और समय समय पे किसानों को एक आमदनी होती रहती है, उत्पादन मिलते रहता है, तो इससे हमारी आमदनी अधिक होती है और ख़ास तौर पे हमारे परिवार के लोगों के लिए उसमें लगातार हमको रोज़गार मिलते रहता है और हम दूसरों को भी उससे रोज़गार दे सकते हैं। और जो बढ़ता हुआ तापमान है, जो वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, उसको भी हम कहीं ना कहीं काफ़ी नियंत्रित कर सकते हैं। और जैसे आजकल जो बातचीत हो रही है कि मिट्टी के स्वास्थ्य की, आप समझ लीजिए कि मिट्टी का स्वास्थ्य मतलब मिट्टी का जो दिल है वो है उसका आर्गेनिक कार्बन। आर्गेनिक कार्बन मतलब जीवाश्म। अगर वो उसका प्रतिशत आपका कम होता जाएगा तो फिर आप समझ लीजिए कि आप उसमें कितना भी उर्वरक और कितना भी रसायनों का प्रयोग करेंगे तो आपका उत्पादन में उस तरीके से वृद्धि नहीं होगी। और इस स्थिति पे हम लगभग आ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे कृषि फसलों का उत्पादन लेने के लिए हम काफ़ी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, किंतु उसके बाद भी क्या हो रहा है कि उत्पादन हमारा हमको जिस उसमें मिलना चाहिए उतना उत्पादन हमको नहीं मिल पा रहा है। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो खर्चा है वो खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो शुद्ध लाभ किसानों को होना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं हो रहा है। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि जितना खर्चा किया उतना ही उत्पादन हो रहा है। तो इस प्रणाली को हम अपनाएंगे तो हम मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रख पाएंगे, और ये बिल्कुल आवश्यकता, और इसको थोड़ा थोड़ा करके हमें अपनाना चाहिए। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, विषय था एकीकृत कृषि प्रणाली। वार्ताकार थे डॉक्टर रूपेंद्र खांडवे। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धिः अद्य प्रवर्तते। तेन सह सामाजिक सुरक्षा सन्धिरपि या DCC इति द्विगुण अंशदान सन्धिः नाम्ना प्रसिद्धः

0: के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क लाइनों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: ये समझौता वैश्विक स्तर पर एकीकृत, सुगम और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर भी श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन यात्रा के बाद कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे। यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। श्री गोयल ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और रोजगार, आर्थिक तथा कृषि मंत्री डेविड क्लारिनवाल से मुलाकात कर भारत बेल्जियम के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, तार्किक और कार्यबल गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट क्षमता वाले 24 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टरों को संचालन करने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन के लिए मिकेल ओयारज़ाबल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले जानते हैं इस सभा के शेष कार्यक्रम। आज सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसके अंतर्गत आज आप सुन सकते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर जानकारी, संत शिरोमणि रविदास

से ग्लोबल स्किल पार्क के सीनियर डायरेक्टर नीरज सहाय से। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर जानकारी देंगे नेटकॉम सीसीटीवी सर्विलांस के टेक्निकल एक्सपर्ट यश वर्मा। और कौन सी अल्कोहल युक्त कफ सिरप आप डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगी, इस विषय पर जानकारी देंगे भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जितेंद्र धाकर।

फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुन सकते हैं 8:30 पर। 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, इसमें आज आप सुनेंगे बिहारी लाल राव की गायें गजलें। प्रदेश की सुर्खियों में सुनिएगा 9:30 पर। जिले की चिट्ठी आपको सुनवाएंगे सुबह 10:00।

महिला संसार कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 10:05 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला सुना जा सकता है 10:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित आशा करण शर्मा का गायन रागों का भैरव। शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम सुना जा सकता है। इसमें आज आप सुन सकते हैं मशरूम उत्पादन तकनीक कम लागत अधिक मुनाफा विषय पर भेंट वार्ता। आइए जानते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। आज सुबह 11 बजे आप सुन सकते हैं फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने आपकी फरमाइश कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 12 बजे। 12:30 पर सुना जा सकता है संग्रहालय से कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुन सकते हैं धारावाहिक हंसना मना है का 13वां भाग। 1 बजे महिला कार्यक्रम महिला सभा सुना जा सकता है। लोक संगीत कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 1:30 पर। सुगम संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 1:45 पर। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दोपहर 2 बजे और आपकी फरमाइश कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 2:30 पर। आइए अब जानते हैं आज की सांध्यकालीन सभा के आकर्षण। शाम 5:02 पर युवा साथी सुन सकते हैं कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति रहेंगे। 5:33 पर फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है। एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 6 बजे। 6:30 पर फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं। सुर्खियों में आपको सुनवाएंगे रात 8 बजे। 8:15 पर दिल्ली केंद्र से हम जिले करेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर केंद्रित पूर्वालोकन कार्यक्रम। 9:30 पर दिल्ली केंद्र से ही आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है। 10:00 आप सुन सकते हैं नाटक अलिफ लैला की कहानी, लेखक हामिद हुसैन और प्रस्तुति होगी शाकिर अली की। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रचनी सुना जा सकता है। इसमें आज आप सुनेंगे माधुरियोग का गायन राग होगा काफी कांडा। तो ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की करेगा मेजबानी। बलराम कृषि महोत्सव 2026 का आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। इंदौर से अबूधाबी के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा का आगाज आज से, और भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में कल 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार सुश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। ये सेमिनार आचार्य सुश्रुत की जयंती के मौके पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर देश विदेश के विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है, जिससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर 0% शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव की शुरुआत आज से होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस महोत्सव का शुभारंभ इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में करेंगे। वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन प्रदेश भर में किया जाएगा। इंदौर के अलावा 17 जुलाई को धार, 19 जुलाई को झाबुआ, 21 जुलाई को अलीराजपुर, 23 जुलाई को बड़वानी, 25 जुलाई को खरगोन, 27 जुलाई को बुरहानपुर और 30 जुलाई को खंडवा में बलराव महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी, उन्नत बीजों, नवीन कृषि यंत्रों, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, फसल विविधीकरण, जल संरक्षण तथा शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। महोत्सव में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उत्कृष्ट किसानों का सम्मान भी किया जाएगा। प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जनकल्याण के लिए सरकार ने 10,800 करोड़ रुपये के अलग अलग विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नगरीय अधोसंरचना विकास मद में 8,445 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति पर मोहर लगाई है। मंत्रिपरिषद ने कुंडलिया वृहद सिंचाई परियोजना 31 मार्च 2031 तक संचालन के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इसे राजगढ़ और आगरमालवा जिले के 1,39,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दूसरे दिन आज आगरमालवा और खंडवा सहित प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
3: हमारे लिए अब एक प्रकार का नशा नहीं रह गया, कितने प्रकार की चुनौतियां आ गई, लेकिन आज हम जब सामाजिक रूप से इस बात को महसूस करते हुए सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है।

0: कि चुनौतियां तो अभी भी है, लेकिन फिर भी सभी प्रकार के नशे के लिए हमारी सरकार किसी भी तरह से कोई भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं रहने वाली है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति 2025 से वित्त पोषित प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से अबुधाबी का आज शुभारंभ करेंगे। ये उड़ान प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबुधाबी से सीधे जोड़ेगी। टाटा समूह की विमानन इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित यह सेवा सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। इंदौर से अबुधाबी हवाई सेवा प्रारंभ होने से मालवा निमाड़ के क्षेत्र की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। यह द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये वार्ता पिछले सप्ताह वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान दोनों पक्षों ने सभी पहलुओं पर ठोस प्रगति की और कई मुख्य मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8,000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें रिएक्टर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, बॉयलिंग वाटर रिएक्टर और लाइट वाटर रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज बारिश का दौर थमने के बाद भोपाल समेत कुछ शहरों में दिन का तापमान बढ़ गया है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में पिछले 6 दिन से भारी या अति भारी बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 241.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य बारिश से 260 मिलीमीटर कम है। वहीं पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर तथा चंबल में औसत से 6% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र ने आज अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, रीवा, मऊगंज और सतना समेत प्रदेश के 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिला कोषालय में 16 और 17 जुलाई को तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए IFM IS केयर्स कैंप लगाया जाएगा। अशोकनगर में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को सिविल जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। ओमान में होने वाली यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2026 के लिए मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के 4 खिलाड़ियों आयुष, करण, महक और नौशीन का चयन भारतीय टीम में किया गया है। डिंडौरी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से बाइक रैली निकाली गई और इंदौर में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जिलों में 14 जुलाई से 31 अगस्त तक दस्तक सेड स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक करेगा मेजबानी। बलराम कृषि महोत्सव 2026 का आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। इंदौर से अबुधाबी के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा का आगाज आज से और भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल,

मंगल कामनाओं के साथ मैं विवेक का हर स्वागत करता हूं आप सभी श्रोताओं का दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में। श्रोताओं, बारिश का मौसम राहत लेकर आता है, लेकिन इसके साथ कई तरह की चुनौतियां भी खड़ी हो जाती हैं। सड़कों पर जलभराव होने से गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं और यही छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती है। हर साल ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें दो पहिया वाहन चालक या पैदल चलने वाले लोग पानी से भरे गड्ढों में गिरकर घायल हो जाते हैं। ऐसे में सिर्फ प्रशासन पर निर्भर रहने की बजाय नागरिकों की भी अहम भूमिका होती है। यदि आपके मोहल्ले या गली में कोई छोटा गड्ढा है और उसे अस्थायी रूप से मलबे, मिट्टी या गिट्टी से भरा जा सकता है, तो स्थानीय लोगों के सहयोग से ऐसा किया जा सकता है। इससे तब तक दुर्घटना का खतरा कम किया जा सकता है जब तक संबंधित विभाग स्थायी मरम्मत ना कर दे। इसी तरह यदि किसी सड़क पर खुली नाली, सीवर चैम्बर, मेन होल का ढक्कन गायब है, तो उसके आसपास अस्थायी बैरिकेड या फिर चेतावनी का निशान लगाना और संबंधित विभाग को तुरंत सूचना देना जरूरी है। कई बार

लोगों के सहयोग से ऐसा किया जा सकता है। इससे तब तक दुर्घटना का खतरा कम किया जा सकता है जब तक संबंधित विभाग स्थायी मरम्मत ना कर दे। इसी तरह यदि किसी सड़क पर खुली नाली, सीवर चैम्बर, मेन होल का ढक्कन गायब है तो उसके आसपास अस्थायी बैरिकेड या फिर चेतावनी का निशान लगाना और संबंधित विभाग को तुरंत सूचना देना जरूरी है। कई बार एक छोटी सी पहल किसी की जान बचा सकती है। इसके साथ ही अपने क्षेत्र के पार्षद, ग्राम पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका में समय रहते शिकायत दर्ज कराएं। आज अधिकांश नगर निकाय हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के जरिए भी समस्याएं दर्ज करने की सुविधाएं देती हैं। सरकार ने भी कई हेल्पलाइन और आपदा प्रबंधन के जो नंबर हैं वो जारी किए गए हैं, जहां कॉल कर जल भराव, सड़क क्षति, खुले मेन होल या अन्य स्थानीय समस्याओं की सूचना दी जा सकती है। बारिश के मौसम में सुरक्षित रहना सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। श्रोताओं, इसी के साथ चलिए कार्यक्रम में शामिल करते हैं पहले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म रहना है तेरे दिल में। आवाज है सोनू निगम की।

ताल स्कूल होटल नगर निगम नगर पालिका व अन्य संस्थानों के लिए 1,550 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। अभी तक इसके लिए करीब 1,300 रुपये शुल्क लिया जा रहा था। और वहीं मॉनसून की शुरुआत 45 दिन बदले 26 साल में सिर्फ दो बार 3 दिन हुई भारी बारिश। इसके साथ ही आज शहर में बादलों और धूप की आंख मिचौली होने की संभावना है। और वहीं देश में पहली बार एआई से तैयार होने वाले विज्ञापनों के लिए अलग अलग नियम तैयार की शुरुआत हो चुकी है। विज्ञापन नियामक संस्थान एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका मसौदा जारी किया है। इसके अनुसार किसी भी विज्ञापन में एआई की मदद के लिए सेलिब्रिटी की आवाज़ चेहरा बनाया गया है या फिर प्रोडक्ट डेमो तैयार किया गया है, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर दिखाया गया है या फिर ऐसा दृश्य जो उपभोक्ता के खरीदी के फैसले पर असर डाल सकता है, तो उस पर साफ तौर पर बताना होगा कि वो एआई से बनाया गया है। और वहीं नए प्रोजेक्ट में आवासीय प्लॉट पर अस्पताल, होटल व छोटे उद्योगों को भी मिलेगी अनुमति। प्रदेश सरकार लैंड यूज नियमों में बदलाव करने जा रही है। नए मसौदों में यह तय करने की बजाय या किसी प्लॉट में क्या बनाया जा सकता है, केवल प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची दी गई है, यानी जिन गतिविधियों पर रोक नहीं है उन्हें अनुमति मिल सकेगी। इस नए प्रोजेक्ट की आवासीय कॉलोनियों में गैर प्रदूषणकारी उद्योगों के साथ अस्पताल, होटल, कोचिंग सेंटर और रेस्तरां खोले जा सकेंगे। हालांकि ये व्यवस्था सिर्फ नई कॉलोनियों पर लागू होगी, पुरानी कॉलोनियों में पहले से स्वीकृत लेआउट ही मान्य रहेगा। और वहीं नगर निगम और जिला प्रशासन करेगा कार्रवाई, बड़ा तालाब के 50 मीटर के दायरे में 35 अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर। और वहीं मध्य प्रदेश में पहली बार एमबीबीएस पीजी के लिए अलग अलग प्रवेश नियम, एनआरआई कोटे के लिए ब्लड रिलेशन तय, गार्जियन का प्रमाण पत्र देना होगा। श्रोताओं, यह थी समाचार पत्रों से सुर्खियां आप सभी के लिए। इसी के साथ चलिए कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म बैड न्यूज से। आवाज है करण औजला की।

विवेक कहार के साथ सुन रहे हैं आप दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। देश विदेश, राज्य, शहर हो या गांव, सबकी महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए समाचार पत्रों से। जिला लैब में अब 600 रुपए में बोरिंग के पानी की जांच होगी। बारिश में बोरिंग और निजी ट्यूबवेल के पानी की शुद्धता पर सवाल उठाने के बीच अब भोपाल के लोग अपने घर के पेयजल की गुणवत्ता की प्रमाणित जांच जिला जल परीक्षण प्रयोगशाला में करा सकेंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने ये सुविधा शुरू की है। घरेलू जल नमूने की जांच के लिए 600 रुपये, अस्पताल

0: ज्ञान सूचना जानकारी और मनोरंजन के संग आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप विवेक के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं कार्यक्रम में होंगी आज ढेर सारी जानकारियां। आज हम आपको बताएंगे सीसीटीवी घर में या फिर अपने आसपास के क्षेत्र में या फिर जहां पे आप व्यापार करते हैं या फिर काम करने जाते हैं वहां पे लगवाते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। साथ ही हम आपको जानकारी देंगे वर्ल्ड यूथ स्किल डे के बारे में और होगी बातचीत उन दवाइयों के बारे में जिन्हें अब डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं खरीदा जा सकेगा। श्रोताओं 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है और ये कैसे भारत देश के लिए महत्वपूर्ण है इसके बारे में हमने देख के बातचीत की है संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के सीनियर डायरेक्टर नीरज सहाय से।
1: वर्ल्ड स्किल डे मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज के युवाओं में स्किल की महत्ता को दिखाना, कैसे स्किल जो है उनके जो एम्प्लॉयबिलिटी की गैप है उसको पूरा करता है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है उस बीच के गैप को कैसे स्किल भरता है और बच्चों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए ये बनाने के लिए पूरे दुनिया में वर्ल्ड स्किल डे 15 जुलाई को मनाया जाता है। जहाँ तक भारत में पिछले कई साल से हम देख रहे हैं पिछले से स्किलिंग पर काफ़ी जोर दिया गया है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो तेज़ी से आगे आगे बढ़ती है और जो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री की उसमें नए नए स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडस्ट्री के लिए जो नए कोर्स आ रहे हैं सरकार की भी इसमें काफ़ी भूमिका है युवाओं को स्किल क्रिएट करने में, जैसे संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क जैसे इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, वो बच्चों को नई स्किलिंग देते हैं जिससे बच्चे बेहतर अपना भविष्य बना सकें।
0: नई शिक्षा नीति के अंदर में भी स्किल्स के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है, तो और सर इसको आप किस तरीके से देखते हैं शिक्षा के साथ स्किल्स को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है?
1: यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। शिक्षा और स्किल को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है कि बच्चा पहले पूरी तरह से शिक्षा अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कुछ भी कर ले और उसके बाद फिर स्किल की खोज में जाए। नई शिक्षा पद्धति जो NEPI है उसने इस दोनों को इंटीग्रेट करने का काम किया है और ये अच्छा है कि बच्चे जब अब कॉलेज में रहते हैं जब पढ़ रहे हैं उसी समय से उन्हें स्किल के बारे में उनके कोर्स में इंटीग्रेट किया जाता है, जिससे वो जैसे ही वो अपनी शिक्षा पूरी करें साथ में उनके पास स्किल भी हो जो इंडस्ट्री रेडी स्किल हो जिससे वो डे वन से जाके उद्योगों में व्यवहार में जाके जॉब कर पाएँ और इंडस्ट्री की जो बढ़ती जरूरत है उसको पूरा कर पाएँ।
0: तो वर्तमान में ऐसी कौन कौन सी सर महत्वपूर्ण स्किल है जो आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए सार्थक साबित होंगी?
1: जैसे हम अभी सभी जान रहे हैं आने वाला समय जो है AI का है, आने वाला समय जो नई टेक्नोलॉजी का है ड्रोन टेक्नोलॉजी का है रोबोटिक का है, पर इसका मतलब नहीं है जो हमारी मूलभूत स्किल्स हैं उसकी ज़रूरत कोई तत्काल में ख़त्म होने जा रही है। जो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है उसमें भी जो आपकी जो शिक्षा थी उनका रूप बदल रहा है, उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं बैटरी मैनेजमेंट्स आ रहे हैं। तो बच्चों को जो बच्चे स्किल सीखने के प्रति जागरूक रहते हैं अपने को हमेशा स्किल बनाने के लिए मेहनत करते हैं उनको जॉब के लिए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए।
0: विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य को यदि हम देखें सर विकसित भारत के यदि हम सपने को देखते हैं तो स्किल उसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा खासतौर से जब युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं?
1: जब हम विकसित भारत के संदर्भ में देखते हैं तो स्किल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जो स्किल्ड यूथ है दो तरह से, एक तो जो भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, हम जिस तरफ से हर क्षेत्र अंतरिक्ष हो चाहे ड्रोन हो चाहे डिफेंस सेक्टर हो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हर जा रहे हैं, हर क्षेत्र में हमारे पास ज़रूरत है अपनी खपत के लिए। दूसरा हमारा पास जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है भारत के पास, वही भारत का पास जो युवा हैं वो मौजूद है जो सीखने के लिए तैयार है। दुनिया में बाकी अन्य क्षेत्रों बाकी अन्य जगह में हम जैसे जान रहे हैं वहाँ की आबादी का अनुपात युवाओं का अनुपात जिस ढंग से घट रहा है वहाँ पर ज़रूरत है स्किल्ड वर्कफोर्स की जिसके

0: वो भारत पर निर्भर करते हैं, और
1: अच्छा
0: भारत वो स्कूल फोर्स को यहाँ से प्रदान कर सकता है।
1: शासन जिस तरीके से लोगों को बढ़ावा दे रहा है बच्चों को खासतौर से स्किल के लिए, तो सर ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं आप देखते हैं जिसके अंतर्गत जो युवा हैं वो अपने आप का रजिस्टर्ड करा के इन संस्थानों से जुड़ सकते हैं?
0: अभी शासन की बहुत योजना है यहाँ पर, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है, यहाँ पर PMKVY योजना है जिसमें सरकार सिखाती है। सरकार जैसे SSR GSP एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ बच्चे आके बहुत ही कम मूल्य में अपने ये स्किल को ले सकते हैं, चाहे स्किल अपग्रेड कर सकते हैं। तो सरकार की तरफ से स्किल को लेके बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है, जिस तरह के बच्चे शॉर्ट टर्म जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पढ़ करना चाहते हैं, तो मैंने अभी 3-4 का नाम लिया है, बच्चे उसमें जा सकते हैं।
1: अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, बहुत सारे युवा हैं जो आपकी बात हमारे माध्यम से सुन रहे हैं, उन तक स्किल्स या फिर कुछ ऐसे रोजगार उन्मुखी मतलब ट्रेनिंग के बारे में यदि आप कोई जानकारी देना चाहें या फिर कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण उनको संदेश देना चाहें सर, तो वो क्या होगा?
0: मैं सिर्फ ये बोलूँगा, आगामी दिनों में जो इंडस्ट्री आ रही है वो तेज़ी से चेंज कर रही है। युवाओं के बारे में है सीखना जरूरी है एक स्किल, पर युवाओं को ओपन रहने की ज़रूरत है, कैसे नई नई स्किल हमेशा बेहतर करते रहे। सिर्फ जो जो पुरानी स्किल थी, कितने स्किल जो हैं आज जो शायद 2 साल 10 साल पहले जो काम की थी, शायद आज वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है, और एक नई स्किल आ रही है। तो इस चेंज से वो ना डरें, नए नए स्किल को अपग्रेड करें। सरकार की बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारी ऑनलाइन सीखने की व्यवस्था है, जिससे बच्चे अपने आप को हमेशा अपग्रेड रख सकते हैं। तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने आप को स्किल करते रहें हमेशा, और आगे आगे बढ़ते रहें।
1: वर्ल्ड यूथ स्किल डे के ऊपर ये जानकारी आप सुन रहे थे संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के सीनियर डायरेक्टर नीरज सहाय से। सुनो इसी के साथ चलिए कार्यक्रम में सुनते हैं अगले गीत को, जिसे लिया है हमने फिल्म तेरे नाम से।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप विवेक के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। अब कार्यक्रम में वक्त है अगली जानकारी का। केंद्र सरकार ने नशे के दुरुपयोग को रोकने के लिए 12% से अधिक एथिल अल्कोहल वाली दवाइयों के नियमों को सख्त कर दिया है। क्या है ये नियम और कैसे अब डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम अल्कोहलिक जो दवाइयां हैं उसको नहीं खरीद पाएंगे, इसके बारे में हमने अधिक बातचीत की है ज़िला भोपाल के मेडिकल यानी केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ से।
2: मेरा नाम जितेंद्र धाकड़ है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन का। अभी जो नया नियम जो आया है GSR के तहत, उसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी दवाएं जिनमें 12% से ऊपर अल्कोहल है, उन दवाओं को बिना डॉक्टर के पर्चे के जो है अब पेशेंट को अपन नहीं दे सकते हैं। पहले भी ये नियम था, अब उसको थोड़ा सख्ती से पालन कर दिया है कि बिना पर्चे के नहीं दे, क्योंकि इन दवाओं से कहीं ना कहीं सेडेशन भी होता है, नींद भी आती है। आजकल कई जगह देखने में आ रहा है कि युवा इनको नशे में उपयोग कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी अल्कोहल वाली दवाएं हैं, सायरप है, कफ सायरप, जिनमें 12% से ऊपर या 12% अल्कोहल है, अब वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाएंगी। ये अभी निर्णय हुआ सरकार का।
1: नज़र डालें तो ऐसी कौन कौन सी और ऐसी दवाइयाँ हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दी जाती हैं केमिस्ट से?
2: देखिए, जितने भी शेड्यूल ड्रग हैं, जैसे H1 हुआ, H2 हुआ, नारकोटिक्स हैं, इस प्रकार की जितनी प्रकार की दवाएं आती हैं जो शेड्यूल के अंदर आती हैं, शेड्यूल X का हुआ, देखिए दवाओं के अंदर सिर्फ शेड्यूल K की दवाएं जो होती हैं उनको आप बिना पर्चे के दे सकते हैं। शेड्यूल K की वो दवाएं होती हैं जो दवाएं आप काउंटर से बेच सकते हैं, OTC दवाएं, उन दवाओं को आप बिना पर्चे दे सकते हो। बाकी सारी दवाएं जो होती हैं वो बिना पर्चे के देना अलाउड नहीं होती। जैसे एंटीबायोटिक है वो शेड्यूल H में आती हैं, नारकोटिक्स दवाएं हैं वो शेड्यूल X के अंदर आती हैं, और मेडिकल स्टोर वालों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भी जो है बिना पर्चे के दवाएं दें। एंटीबायोटिक दवाओं देने से काफ़ी नुकसान होता है, हेल्थ को नुकसान होता है। अगर आप हायर एंटीबायोटिक लेते हैं तो उस एंटीबायोटिक के कारण जो दूसरी दवाएं आप बाद में लेते हैं या फिर छोटा एंटीबायोटिक लेते हैं, बॉडी पर असर नहीं करता। अभी बीच में आपने देखा होगा कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात रखी थी कि एंटीबायोटिक दवाओं का जो है वो दुरुपयोग ना हो। अच्छा। और वो दवाएँ जो हैं वो सिर्फ पर्चे के माध्यम से दी जाएँ। हम गाँव में देखते हैं, ग्रामीण लेवल पर देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि सर्दी खांसी हो, उन्होंने कहा एक काम करो एंटीबायोटिक दवा दे दो, लेकिन फिर उससे क्या होता है कि हेल्थ पे जो प्रभाव पड़ता है तो फिर बाद में क्या होता है कि वो बॉडी जो होती है वो आपकी उस चीज़ की आदी हो गई, तो उस कारण से क्या होता है बाद में दवाएँ असर नहीं करती हैं।
1: अगर कोई व्यक्ति बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इन दवाओं को बांटता पाया जाता है तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है और कैसे कोई आम जन जो है वो इसकी शिकायत किस जगह पे कर सकता है?
2: बिना पर्चे के दवा देना अलाउड नहीं है। अगर बिना पर्चे कोई भी व्यक्ति अगर दवा देता है तो आप ड्रग डिपार्टमेंट में उसकी शिकायत करते हैं। हर जिले का फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट होता है, उसके अधिकारी होते हैं, हर जिले के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, और पूरे मध्य प्रदेश का फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट जो अपने राजधानी भोपाल में है तो वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के ड्रग इंस्पेक्टर को कंप्लेन कर सकते हैं।
1: लोग अक्सर छोटी सी सर्दी खांसी जुकाम पर प्रिस्क्राइब्ड एक दवाई लेने लगते हैं तो इससे और क्या बड़े नुकसान देखने को मिलते हैं?
2: देखिए, क्या होता है कि हमें ये नहीं पता कि सर्दी हो रही तो किस कारण से हो रही, हमें ये नहीं पता कि फीवर हो रहा है तो हमें किस कारण से हो रहा है, अगर हमारा पेट दर्द हो रहा है किस कारण से हो रहा है, हम जनरली जाके बात बोल देते हैं। और हो सकता है कि आपको उस चीज़ के लिए एक आपको दवा दे दी, लेकिन किस कारण से हो रही है, किस स्थिति के कारण हो रही है, वो तो आपको डॉक्टर ही गाइड करेगा ना। डॉक्टर दवा लिखता है डायग्नोसिस के बेस पे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस कारण से हो रही है।
1: बिल्कुल
2: ठीक है। और अगर आप ऐसे अगर दवा खरीदते हैं तो आपकी बॉडी में जो वो दवा जाके क्या करेगी, क्या उसका साइड इफेक्ट होगा, उसके क्या असर आपके अंदर होंगे, वो आपको नहीं पता। इसलिए मैं आपके माध्यम से आम जनता से भी कहूँगा कि बिना डॉक्टर के, आप गाइड के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर को दिखाए मन से दवा नहीं खरीदने चाहिए। मन से दवा खरीदोगे अगर आप तो आपको कहीं ना कहीं उसके नुकसान उठाने पड़ेंगे। और मैं आपके माध्यम से

0: केमिस्टों से भी कहना चाहूँगा कि आप मतलब केमिस्ट को भी बिना पर्चे के कोई दवा नहीं देनी चाहिए।
1: खास तौर से मेडिकल के क्षेत्र वाली जो जानकारियाँ होती हैं वो आम जन को कम होती हैं, ऐसे में आप क्या कुछ ऐसे ज़रूरी बातें बताना चाहेंगे कि ताकि आम इंसान भी इस क्षेत्र में जानकारी पा सके।
0: देखिए मैं एक बात ये कहना चाहूँगा पहले तो कि सबसे पहले प्रयास तो ये करना चाहिए कि बिना डॉक्टर को दिखाए दवा नहीं खरीदनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप कहीं पर कोई दवा अगर खरीद रहे हैं तो आप जो है फिर अपना दूसरों की सुनी हुई दवा ना लें, और जो मेडिकल स्टोर है आप उसको ही अपनी बात बताएं कि ये प्रॉब्लम है, और प्राथमिक उपचार के लिए जो OTC के अंदर जो दवाएं आती हैं वो दवा आप ले सकते हैं। आपको अगर प्राथमिक उपचार की अगर आवश्यकता है तो मैं बोलूँगा कि शेड्यूल K की जब दवाएं आती हैं जो ओवर द काउंटर दी जाती हैं, उन दवाओं का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, वो दवा आप प्राथमिक उपचार के लिए ले सकते हैं। बाकी फिर मैं एक बार कहूँगा, जो शेड्यूल के अंदर हैं, चाहे वो नार्कोटिक के अंदर आती हूँ, चाहे वो कफसारा पाते हूँ, चाहे वो एंटीबायोटिक दवाएं आती हूँ, ये दवाएं कभी भी बिना पर्चे के नहीं लेना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जो छोटे बच्चे जो होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि सर्दी हो रही है तो कफसारा ले आए या कोई सी टैबलेट ले आए, कभी नहीं लेना चाहिए। घर में जो दवा रखी हुई है उस दवा को कभी भी बिना एक्सपायरी देखे अपन को यूज़ नहीं करना चाहिए। सायरप जो होते हैं वो कभी खुली बोतल अगर आपके घर पे रखी हुई है तो वो खुली हुई बोतल जो है वो आपको अगर 8-10 दिन 15 दिन भी हो गए, अपने को लगता है अभी तो लेकर आए एक्सपायर नहीं, लेकिन उसके बाद में उसमें चेंजेस आते हैं। कभी भी खुली दवा घर पे अपने को उपयोग नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों को अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और कभी भी कोई दवा अगर आप ले रहे हैं तो छोटी चीज़ें, ये तो एक्सपायर है, उस एक्सपायरी है वो तो हर आदमी देख सकता है, तो उसको अपने को हमेशा देख के लेना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान हर व्यक्ति को रखना चाहिए।
1: दवाइयों से जुड़ी हुई ये जानकारी आप सुन रहे थे ज़िला भोपाल के केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ से। श्रोता जी के साथ चलिए कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म मसान से।

0: तुझे सोचूं तो फूट जाता हूं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग अपने घर, ऑफिस या फिर जहाँ पर हमारा बिजनेस है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगवाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरास लगवाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हमने अधिक बातचीत की है विषय विशेषज्ञ यश वर्मा से।
2: सबसे पहली चीज़ तो यह है, देखिए जैसे अभी आपको पता होगा गवर्नमेंट अभी जस्ट जितने भी सीसीटीवी चाइनीज़ कैमरेज थे उन सबको गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली बैन किया है। तो बेसिकली गवर्नमेंट एसटीक्यूसी कंप्लाइंट एक निकल के आई है सर्टिफिकेट, तो उसकी वजह से जो चाइनीज़ ब्रांड्स थे दे आर आउट ऑफ द मार्केट राइट नाउ। सो सबसे पहला अवेयरनेस तो ये होना चाहिए, जो भी कस्टमर है अगर वो सिक्योरिटी सर्विस कैमराज इंस्टॉल करवा रहा है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको इस चीज़ का ध्यान रखना कि चाइनीज़ कैमरे वो इंस्टॉल ना करवाए। तो जितने भी सीसीटीवी ब्रांड्स हैं लाइक, तो ये अब इंडिया में इंस्टॉल किए जा सकते हैं, और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो डेटा प्राइवेसी है उसका ध्यान रखते हुए किया गया है।
1: अच्छा,
2: हाँ, और इसमें इसकी वजह से थोड़ा प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, बट ऑब्वियसली बट अच्छा है जी, ये इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ जो आपका डेटा लीक होकर के बाहर जाता था वो सेफ है इसमें।
1: ठीक है, तो डेटा लीक भी एक बड़ी चुनौती होती है इसमें।
2: बिल्कुल, ये है ही क्योंकि आप देख सकते हो कि कोई भी चाइनीज़ ब्रांड है या कोई भी ईवी भी है, लेट सपोज करते हैं आजकल ईवीज़ में भी कैमरेज आते हैं, सेंसर्स आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही डेटा कंज्यूम करते हैं और डेटा के एल्गोरिथम्स पर एक प्री डिफाइंड सेट का पैरामीटर्स इसमें रहता है। तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न है, इसी चक्कर में गवर्नमेंट ये रूल लेकर के आई है। अभी आप देखते होंगे हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क में भी गवर्नमेंट PIS रेगुलेशंस लेकर के आ रही है। तो जो रिफर्बिश मार्केट था, जो सेकेंडरी हार्ड डिस्क होती थी, जो लोकल हार्ड डिस्क वाइट लेबलिंग करके लोग बेचते थे, वो भी रुक जाएगा आप कुछ दिन बाद। तो सीगेट और वेस्टर्न डिजिटल जो वर्ल्ड में लेगेसी ब्रांड्स हैं वो हार्ड डिस्क आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें
1: और क्या बेसिक ऐसी चीज़ें होती हैं जब भी हम सीसीटीवी घर में लगवा रहे होते हैं या फिर अपने आसपास के एरिया में लगवा रहे हैं?
2: घर में अपने आसपास लगवाने के समय सीसीटीवी कैमरास पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको कितना टेक्निकल नॉलेज है, कितना वास्ट एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो ये मैटर करता है। दूसरा सबसे मैटर ये करता है कि आपको कितने कैमरेज लगवाने हैं। अच्छा। क्या होता है, एक स्केल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कहीं पर किसी घर में एक कैमरे में भी काम हो जाता है, कहीं पे 4 कैमरे लगते हैं, कहीं पर 16 लगते हैं, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक सोसाइटी वगैरह तो वहाँ पे 100+ कैमराज भी लगते हैं। तो ये टोटल सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, तो इसमें आपको जो आपका सिस्टम इंटीग्रेटर या इंस्टॉलर है दैट हैज़ टू बी द परफेक्ट वन, ताकि आपको सर्विसेज मिल सके और कोई इश्यूज ना आए। अब बात करें सीसीटीवी में कैसे करना है और क्या करना है, तो आप सबसे पहले IP कैमराज लगवा सकते हैं, दे आर मेंटेनेंस फ्री इफ इन केस अगर आपका सिस्टम इंस्टॉलर जो है वो सर्टिफाइड है।
1: अच्छा,
2: ये चीज़ है। और स्मॉल स्केल्स में कहीं घर पे लगाना है या कहीं छोटी दुकान है तो वहाँ पे एनालॉग HD कैमराज जो होते हैं वो सफिशिएंट है, बट दे टेक मेंटेनेंस एज वेल। ये चीज़ है।
1: डेटा की बात करें तो उसमें डेटा प्रिजर्वेशन को लेके क्या कुछ नियम हैं और किस तरीके की रूल्स एंड रेगुलेशंस आप देखते हैं?
2: देखिए, डेटा जो स्टोर होता है सिक्योरिटी सर्वेलेंस का, वो बेसिकली हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। तो इस पूरे सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम के अंदर जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है उसमें हार्ड डिस्क इंस्टॉल रहती है। तो डेटा तो आपका लोकली ही होता है, बट या आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और जब आप उसको अपने मोबाइल फोन्स पे लाइव देखना चाहते हैं कहीं और बैठ करके देखते हैं, तो वहाँ पर उस केस में आपका डेटा प्राइवेसी का कंसर्न आता था। तो चाइनीज़ कैमरे में यही एक लूप होल होता था कि जब अपन उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते थे तो आपका जितना भी डेटा है वो बाहर जाता था, इंडिया के बाहर। तो अब क्या है, जो कंप्लायंसेस लेकर के आए इसी में यही हुआ कि इंडिया में ही इसका डेटा सेंटर होना चाहिए, एप्लीकेशन जो है वो इंडिया के डेटा सेंटर्स में होनी चाहिए, जो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो बाकायदा वो तो आपके NVR में लोकली स्टोर रहती है, तो उसमें ऐसा कोई खास ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है।
1: जी, एक आम इंसान यदि इस रेंज को पकड़ के चले गया, अगर उसको छोटा सा कैमरा लगवाना है, बड़ा कैमरा लगवाना हो, तो कितना क्या खर्चा और कितना?
2: सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे एक मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल भी बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स से मिलकर के बनी होती है, टायर हो गया, वायरिंग हार्नेस हो गई, फिर आपका बियरिंग हो गई, आपके पुश बटन हो गए, ये बहुत सारी चीज़ें जो कंपोनेंट्स बनती है। तो ये सीसीटीवी जो सिस्टम है ये पूरा एक कंपोनेंट बेस्ड सिस्टम है, इसमें वायरिंग भी होती है, केबलिंग्स भी होती है, बॉक्सेस भी लगते हैं, NVRs भी होती है, हार्ड डिस्क भी। तो इसमें आपको हर एक कंपोनेंट में जो आप जिस वेंडर को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो सिस्टम इंटीग्रेटर को सिलेक्ट कर रहे हैं, उससे आप ये क्वेश्चन करिए कि आप जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो किस ब्रांड का है, इज इट अ

0: रिफर्बिश वन और अ न्यू वन, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको जो केबल्स लेनी है वो आपकी प्योर कॉपर होनी चाहिए।
1: अच्छा
0: आजकल मार्केट में ड्यू टू कॉम्पिटिशन जितने भी कस्टमर्स हैं वो प्योर कॉपर केबल ना लगवा करके वो सीसी लगवा लेते हैं।
1: अच्छा
0: कई बार वेंडर्स गाइड नहीं करते हैं अवेयरनेस, क्योंकि मार्केट में अवेयरनेस नहीं है, तो इसीलिए कई बार कोटेशंस आप देखते होंगे कोई 25 में भी लगा लेता है, कोई 45 में भी लगाता है। तो ये पूरा का पूरा जो हर एक एक पार्ट है पूरे सिस्टम का, सीसीटीवी सिस्टम का, उसमें हर एक एक प्रोडक्ट में ना आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अदरवाइज आपने किसी भी एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया तो उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है।
1: अब बहुत सारी श्रोताएं जो आपकी बात हमारे माध्यम से सुन रहे हैं, उन तक सिक्योरिटी से जुड़ी हुई या सर्वेलेंस से जुड़ी हुई चीज़ों को यदि आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में बताना चाहें तो वो क्या होगा?
0: सर देखिए, आजकल के माहौल में हमको एक वॉच डॉग रखना, कई बार पेरेंट्स होते हैं वो घर के बाहर ऑफिस में रहते हैं, कई बार ये नहीं हो पाता है कि अपन कोई घर में है नहीं है, किसी कोई छोटा बच्चा उसको देखना हो, या कई आजकल पेट्स भी होते हैं घर पे, तो कि एक नज़र रखने के लिए जो है एक सिक्योरिटी सिस्टम ज़रूरी होता है आजकल। अब ये लोग लगवाते हैं इसलिए भी हैं कि कई बार बाहर रहते हैं, तो एक वॉच डॉग रखने से एक सपोर्ट सिस्टम रहता है कि यार हम लाइव देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, लगवाना चाहिए, अच्छी चीज़ है।
1: सिक्योरिटी यानी सीसीटीवी कैमरा से जुड़े हुए जानकारी ये साझा कर रहे थे हमसे विषय विशेषज्ञ यश वर्मा। इसी के साथ चलिए श्रोताओं कार्यक्रम में शामिल करते हैं इस गीत को जिसे हमने लिया है फिल्म मुझसे शादी करोगी से।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई सूचना, जानकारी और मनोरंजन के साथ। तो मुस्कुराते रहिए, कोई ना कोई काम दिन में एक बार कुछ ऐसा जरूर कीजिए जो आपके दिल को सुकून दे। इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में अब विवेक कहार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने

0: पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
2: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रिग्नैनी पांडे।
0: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रूबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमरीका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। 3 भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, गीत संगीत जो है वो मन को सुकून देता है, आपसी बातचीत भी मन को सुकून देती है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है जिससे सुकून और धैर्य जो है वो दूर जाता जा रहा है, मन में विचलन एक तरह की खलल दे रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है और अकेलापन भी। खुशी और संतुष्टि सभी को जो है वो बहुत ही मिनटों में चाहिए और स्थायी खुशी का ठिकाना कहीं है ही नहीं। तो क्यों ये सब हो रहा है, क्या कभी हम इस पर विचार करते हैं? शायद पूरी तरह नहीं करते। पूरी हमें खुशी जो है वो महसूस नहीं होती। छोटे से संवाद में भी असफलता मिल जाती है। नींद की कमी, तनाव, बोरियत और अकेलेपन का एहसास जो है

आए दिन की समस्या बन गई है। सहानुभूति का भाव हम सब कहीं ना कहीं नदारद सा करते चले जा रहे हैं, तो क्यों ये कमियां जो हैं वो हमारे जीवन में आ रही हैं, आगे इन सब के बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी बातचीत करते चलेंगे। पहले ये गाना।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा इस वक्त आप सुन रहे हैं। शुरू तो हम बात कर रहे थे कि हम पूरी तरह खुशी क्यों महसूस नहीं कर पाते, और कभी कभी तो होता है कि छोटे से संवाद में भी हम घबरा जाते हैं, और नींद तो आजकल जैसे जो है वो बहुत कम आने लगी है लोगों को। तो क्या वजह है इस तनाव का? तो कह सकते हैं कि इसका कारण कहीं ना कहीं जो है वो सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला असीमित समय है। जी हाँ श्रोताओं, असीमित समय। हर जो काम की है वो एक समय सीमा होनी चाहिए। सोशल मीडिया की अपनी अहमियत है, लेकिन यहाँ बिताया जाने वाला समय जो है वो जिस तरह का कंटेंट हम देख रहे हैं उसकी गुणवत्ता की समझ भी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी समझ को बरकरार रखिए और इसकी जो वो समय सीमा जो है वो निर्धारित करिए। तो इससे जो है वो हम बच सकते हैं जो भी तनाव है, जो भी नींद की कमी है, इन सब चीज़ों से।

श्रोतो, आजकल ज़्यादातर लोगों से सुनने में मिल जाता है कि वो अकेलापन महसूस करते हैं। सामान्य जीवन में कई बार ख़राब भाषा, अजीब से हाव भाव और नकारात्मक हिंसक शब्दों का इस्तेमाल, बड़ों का अनादर, संस्कारों का अभाव, इन सब में बदलाव के लिए बड़ों को ही पहल करनी होगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो बच्चों में और यंग जनरेशन में बहुत अधिक देखने को मिल रही हैं। तो इसमें जो है वो बदलाव के लिए बड़ों को पहले आपने इसमें पहल करनी होगी और इन्हें उन्हें आगे आना होगा। सबसे पहले खुद बड़े स्क्रीन से दूरी बनाएं, स्क्रीन टाइम कम करें, नकारात्मक टिप्पणियां करने से गुरेज करें और फिर बच्चों के लिए इसके लिए उन्हें प्रेरित करें, तो इस समस्या का समाधान जो है वो मिल सकता है। तो पहले बड़ों को इस पर कदम उठाने होंगे।

श्रोताओं, हर व्यक्ति को मोबाइल के इस्तेमाल का समय सीमित करना चाहिए तो मन को जो है वो शांत रखने में फ़र्क दिखाई देगा। और परिवार के साथ रोज़ कुछ समय ज़रूर बिताएं, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, क्योंकि अक्सर होता है कि बड़े मोबाइलों में व्यस्त रहते हैं तो बच्चों का भी फिर जो है वो मन मोबाइल देखने का करता है और वो भी मोबाइल में बैठ जाते हैं, तो इस तरह से जो है वो बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो कोशिश करें कि परिवार के साथ समय बिताएं, बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं। पहले होता था ना कि दादा दादी नाना नानी वगैरह घर के बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो कहानियां सुनाते थे, तो ये भी एक कर सकते हैं आप, शाम के वक्त रात के वक्त बच्चों को जो है वो कहानियां सुनाई जा सकती हैं। तो इस तरह से जो है वो हम अपनी लाइफ में फ़र्क को देख सकते हैं। और अब गीत संगीत की दुनिया में चलते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा में अभी दे रहे हैं एक छोटा सा अंतराल, क्योंकि वक्त हो चला है इस घंटे की खास खबरों का। तो पहले सुन लेते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार स्वश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। इसमें आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर देश विदेश के विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कृषक कल्याण वर्ष के तहत विभिन्न जिलों में आयोजित इस महोत्सव के दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी, प्राकृतिक एवं जैविक खेती सहित शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से अबूधाबी का शुभारंभ भी करेंगे। ये सेवा सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कल प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जनकल्याण के लिए सरकार ने 10,800 करोड़ रुपए के अलग अलग विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। और क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को कल बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, विनम्रता और सभ्यता केवल नियम नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका भी है, सलीका भी है। इसलिए अपने व्यवहार में इन्हें शामिल करें। तो किस तरह से जो है हम अपना परिचय सलीके से दे सकते हैं, आगे बात करेंगे। पहले ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे विनम्रता और सभ्यता की। जी हाँ, अगर आप बैठे हुए हैं और कोई आपसे मिलने आया है और हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, तो पहले हमें खड़े होना है। खड़े होकर हाथ मिलाना सम्मान और विनम्रता का संकेत है, उससे सामने वाले को अहमियत का एहसास होता है। दूसरा, अगर हम कहीं किसी के घर मेहमान हैं और हम कहीं अगर भोजन करने जा रहे हैं, तो भोजन में कमियां ना निकालें। मेज़बान ने प्रेम और मेहनत से उसे तैयार किया होता है, इसीलिए पूछने पर भोजन की सराहना करें और उनके जो प्रयास का सम्मान करें और भोजन की तारीफ करें। तो ये जो है वो सलीके का एक तरह का परिचय है।

तो श्रोताओं, हम कह सकते हैं कि आपसे मेल मिलाव से, गीत संगीत से, किताबें पढ़ने से और अपने परिवार के साथ वक्त बिताने से जो है हमारा दिमाग भी तरोताज़ा रहता है, हम खुश रहते हैं, हमें शांति का भाव मिलता है और छोटी छोटी खुशियां भी मायने रखती हैं। तो ज़रूर इन बातों को अपनाइए।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अब हमें इजाज़त दीजिए इस फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा से। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बिहारी लाल राव की गाई गजलें।

सुगम संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं बिहारी लाल राव।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार थे बिहारी लाल राव। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है।
3: आपके साथ मैं हूं अभिषेक कटियार।
2: श्रोताओं, आज 15 जुलाई है, यानी विश्व युवा कौशल दिवस। आज के बदलते दौर में युवाओं के लिए केवल किताबी ज्ञान ही काफी नहीं है, बल्कि हुनर का होना भी उतना ही जरूरी है। वैश्विक स्तर पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ पैनल के साथ साथ युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बेहद खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे पहले विशेषज्ञ हैं श्री शिवम मिश्रा जी, जो कि भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा नेशनल यूथ अवार्डी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता हैं और जमीनी स्तर पर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं श्री अभिषेक तिवारी जी, जो केंद्रीय विद्यालय भोपाल में संस्कृत के शिक्षक हैं। पूर्व में आप श्रमोदय विद्यालय में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और पारंपरिक संस्कृत शिक्षण में आधुनिक तकनीकी, आईटी और गेमिंग के समावेशन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज की युवा पीढ़ी की आवाज़ और 11वीं कक्षा की हुनर छात्रा आनंदा पाठक, जो आज के युवाओं के दृष्टिकोण और उनकी उम्मीदों को हमारे सामने रखेंगी। आप तीनों ही अतिथियों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: बहुत धन्यवाद।
2: तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि हमारे युवाओं के लिए हुनर के क्या मायने हैं। अभिषेक जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, डिजिटल क्रांति और नई शिक्षा नीति ने हमारे सीखने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। अब पढ़ाई का मतलब सिर्फ रटना नहीं बल्कि हुनरमंद बनना है। अभिषेक जी, आप चूंकि शिक्षा जगत से जुड़े हैं, हमारी नई शिक्षा नीति किस प्रकार से युवाओं को स्कूल कॉलेज के स्तर से ही पढ़ाई के साथ साथ हुनरमंद बनाने में एक मजबूत पुल का काम कर रही है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
5: हाँ, पहले सभी के लिए विश्व युवा कौशल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह केवल किताबी बोझ को बढ़ाने वाली शिक्षा नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में उतरने वाली शिक्षा की

0: वकालत करती है। यह नीति पढ़ाने और हुनर के बीच में, मतलब केवल पढ़ाई नहीं होगी बल्कि हुनर और पढ़ाई दोनों के बीच में जो अंतर था एक समय में, उसको पूर्ण रूप से खत्म कर रही है। अब कक्षा 6वीं से ही बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप को अनिवार्य किया गया है, यानी बच्चा अब जब स्कूल से बाहर निकलेगा तो उसके हाथ में सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा बल्कि कोई ना कोई हुनर उसके पास होगा। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कौशल को यानी कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए तीन चीज आवश्यक होती हैं, ज्ञान, कर्ता और करण, यानी कि कौशल। NEP 2020 इसी बात को सिद्ध करती है कि यह छात्रों को ज्ञान के साथ साथ करण यानी सही स्किल का टूल दे रही है जिससे बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक जी। कहीं ना कहीं हमारे युवा आज के दौर में हुनर को सीख कर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते दिखाई भी पड़ रहे हैं। शिवम जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, जब हम कौशल विकास की बात करते हैं तो असली चुनौती और अवसर हमारे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं जहां युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा की ज़रूरत है। एक नेशनल यूथ अवार्डी होने के नाते और ज़मीनी स्तर पर आपके स्वयं के अनुभव के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को कौशल विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इस समय किस प्रकार के प्रभावी प्रयास आप देख रहे हैं?
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और हम ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से अगर हम युवाओं की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम ज़्यादातर हम सुनते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर जहाँ कम रहता है वहाँ पर कौशल की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके माध्यम से जो हमारे युवा साथी हैं अपने कौशल का विकास करके अपने पारंपरिक जो भी उनके व्यवसाय हैं उसको भी बेहतर कर सके। तो इसके तहत तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक बहुत अच्छी योजना है जिसके माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में युवा अपने कौशल के विकास कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो स्टार्टअप इंडिया न केवल लोगों को वित्तीय सहायता देती है बल्कि उनको एक मेंटेनशिप एक प्रशिक्षण भी प्रदान करती है, जिसकी सहायता से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं वो अपने कौशल का विकास बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला सवाल आनंदा आपसे है, आप चूँकि युवा पीढ़ी की नुमाइंदगी करती हैं, आपके नज़रिए से आज के युवा को सबसे ज़्यादा किस स्किल की ज़रूरत है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है?
3: मेरे हिसाब से युवा पीढ़ी को लर्निंग माइंडसेट स्किल सीखने की बहुत ज़रूरत है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपनी प्रतिभा को लोगों तक सही तरीके से पहुँचा लें तो वो बहुत बड़ी बात होगी और ये बहुत अच्छी कला भी है।
1: बिल्कुल ठीक है आपने, माइंडसेट लर्निंग स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। अभिषेक जी, अगला सवाल मेरा आपसे फिर है, आज के दौर की अगर हम बात करते हैं तो ये AI कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। कमाल की बात यह है कि आप स्वयं ही पारंपरिक संस्कृत शिक्षण में आधुनिक तकनीकी और गेमिंग के बेहतरीन समावेशन के लिए जाने जाते हैं। हमारी युवा पीढ़ी इस नए जमाने के डिजिटल स्किल को किस तेज़ी से अपना रही है और आपको इसमें भविष्य की क्या कुछ संभावनाएं दिखती हैं?
0: जी देखिए, आज की जो हमारी जनरेशन है वह डिजिटल नेटिव्स की है, यानी कि वे तकनीक के बीच बड़े हो रहे हैं, उनकी सीखने की रफ्तार भी गजब की है। जब मैंने पारंपरिक शिक्षण जो संस्कृत मैंने पढ़ाई उसमें गेमिंग और आधुनिक तकनीक का समावेशन किया, मतलब जो पारंपरिक संस्कृत शिक्षण था उससे हमने AI को जोड़ा और गेमिंग को जोड़ा, तो मैंने पाया कि युवा किसी भी क्लिष्ट विषय को टॉपिक को तकनीक के माध्यम से पलक झपकते ही सीख लेते हैं। गेमिंग से उनका लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच तो बढ़ी ही है और वो सीधे कोडिंग और AI पर काम करते हैं। और जैसा कि चाणक्य नीति में भी एक बहुत ही सुंदर श्लोक इस बात का प्रमाण है कि कोतिभारा समर्थानाम किम दूरम व्यवसायीनाम। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो सामर्थ्यवान है कुशल है उसके लिए कोई भी काम भारी नहीं होता है। आज डिजिटल स्किल सीख कर हमारे युवा ग्लोबल स्टूडेंट बन रहे हैं, भोपाल या फिर मध्य प्रदेश या भारत के किसी भी क्षेत्र में बैठा हुआ छोटे से गांव में बैठा हुआ युवा कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से विदेशों में भी व्यापार कर सकता है। तो यह भौगोलिक दूरियों को खत्म कर रहा है और युवाओं में अनंत संभावनाएं बढ़ा रहा है।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी चर्चा हुई आपने जो डिजिटल इनोवेशन किया है, संस्कृत गेमिंग की एक लैब बनाई है जिसे भारत की पहली संस्कृत गेमिंग लैब भी कहा जाता है, तो ये छात्रों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: जी संप्रति यह गेमिंग लैब भारतवर्ष की पहली संस्कृत गेमिंग लैब है, क्योंकि यह NCERT का जो नवीन पाठ्यक्रम है और NEP 2020 का जो नियमावली है उसके तहत बनाई गई है, जिसमें बच्चे कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चे

0: और वर्तमान में कक्षा 6वीं से 10वीं तक के बच्चे प्रत्येक पाठ के, चूंकि यह संस्कृत में बनी है अभी वर्तमान में, तो प्रत्येक पाठ के गेम्स खेलेंगे, यानी बच्चे चैप्टर्स को पढ़ेंगे और प्रत्येक पाठ के 3 गेम बनाए गए हैं उन बच्चों के लिए। जब बच्चे पढ़ेंगे और गेम खेलेंगे तो उनका पूरे पाठ का रिविज़न भी हो जाएगा, और ना केवल रिविज़न होगा अपितु उसके माध्यम से बच्चे और अधिक पढ़ेंगे, क्योंकि स्कोरिंग कम आएगी तो बच्चों को कहीं ना कहीं जागृति महसूस होगी कि हम और पढ़ें और फुल स्कोर गेन करें। और ऐसा करने से बच्चों के अंदर संस्कृत के प्रति बहुत ही रुचि जागृत हुई है। जैसा कि मेरे जितने भी विद्यार्थियों ने इसको खेला है, अभी तक वर्तमान में समस्त भारतवर्ष में 15,000 से ज़्यादा बार खेला जा चुका है उस गेम के लिए, जो कि गत सप्ताह ही लॉन्च हुआ है। प्राय अभिभावकों ने यह बात कही है कि हमारे बच्चे गेमिंग खेलते रहते हैं, गेम कुछ ना कुछ, चाहे वो फ्री फायर हो अथवा नाना प्रकार के जो गेम आ रहे थे, बच्चे उसमें लगे रहते थे। लेकिन जब से संस्कृत गेम लॉन्च हुआ तो बच्चे पढ़ते हैं और गेम खेलकर उसको स्कोर जनरेट करते हैं ताकि उनका स्कोर बोर्ड पर नाम आ सके। और इसके अलावा उस वेबसाइट पर एक और ख़ास बात यह है कि यदि आप गेम खेलते खेलते थक गए हैं, तनावग्रस्त हैं, यह छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए है कि जो थक जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो साइट में एक ध्यान की भी लिंक दी गई है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे द्वारा कई ध्यान बनाए गए हैं जिसको करके बच्चे माइंडफुल मेडिटेशन के द्वारा तनाव मुक्त हो सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा। कहीं ना कहीं ये जो गेमिंग, संस्कृत गेमिंग एप्लीकेशन आपने बनाया है, ये हमारे छात्रों को, खासतौर से संस्कृत जो एक जटिल सब्जेक्ट माना जाता है, उसको सरल रूप में समझाने में सफल हो पा रहा है। शिवम जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। हम अपने अगर गाँवों की बात करें तो प्रतिभा की कोई कमी हमारे गाँव में नहीं है, लेकिन पारंपरिक हुनर जैसे हस्तशिल्प या कृषि तकनीक को अगर आज के बाजार के हिसाब से अपडेट ना किया जाए तो वे पीछे छूट जाते हैं। ग्रामीण युवाओं के इन पारंपरिक कौशलों को आधुनिक बाजार के अनुकूल और मुनाफेदार बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ प्रयास हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, इसको किस प्रकार से देखते हैं?
2: देखिए, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा निवासरत हैं, उनकी अगर हम बात करें पारंपरिक जो उनके जो भी मान लीजिए कोई व्यवसाय है, तो उसको और कैसे बेहतर कर पाएँ, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी एक आरंभ की गई है। इसके माध्यम से जो हमारे पारंपरिक कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, बल्कि आधुनिक तकनीक भी उनको प्रदान की जा रही है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि और बेहतर किस तरीके से वो अपने इस व्यवसाय को कर पाएँ। इसमें अगर हम बात करें स्पेशली स्टैंड अप इंडिया, तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनुसूचित जाति जनजाति निवासरत हैं, उनको बैंक लोन कितनी आसानी से प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत, ताकि वो अपना व्यवसाय और बेहतर कर पाएँ और उसमें नई तकनीकों का भी बड़ी आसानी से प्रयोग कर पाएँ।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रामीण हुनर है उसको आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार द्वारा कई सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, उसके सकारात्मक परिणाम भी दिखते हैं। आनंदा, आपसे एक बार फिर मेरा सवाल है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जानकारी का अभाव युवाओं को इन योजनाओं का लाभ लेने से रोक सकता है, और आपका अपना अनुभव एक स्टूडेंट के तौर पर क्या कहता है?
3: हाँ, मुझे लगता है कि कई बार जानकारी की कमी सबसे बड़ी समस्या होती है। हम जैसे छात्रों को अक्सर किसी योजना के बारे में तब पता चलता है जब उसकी आखिरी तारीख होती है या किसी शिक्षक या दोस्त से बताया जाता है
1: जी।
3: अगर स्कूल, कॉलेज और सोशल मीडिया के माध्यम से अगर इन योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में बताई जाए तो बहुत लाभकारी हो सकता है बच्चों के लिए।
1: बिल्कुल ठीक कहा नंदा आपने। और हमारी सरकार इस स्तर पर प्रयास भी काफ़ी कुछ कर रही है, और डिजिटल मीडिया के इस दौर में बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन और उनकी सूचना डिजिटल तरीके से पहुंचाई भी जा रही है। अभिषेक जी, आपसे फिर एक बार मेरा सवाल है कि जो चीज़ें छात्र स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, उद्योगों की मांग उससे काफ़ी अलग होती है। कंपनियाँ डिग्री से ज़्यादा व्यावहारिक समझ को देखती हैं, और बाज़ार की इन आधुनिक ज़रूरतों और युवाओं के कौशल के बीच एक बेहतरीन तालमेल बिठाने के लिए शैक्षणिक स्तर पर बहुत सारे सकारात्मक प्रयास हमारी सरकार और हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में किए गए हैं, इसको किस प्रकार से?
0: बिल्कुल, ये कहा जाए तो एक तरीके से कड़वी सच्चाई भी रही है कि डिग्री और इंडस्ट्रीज की मांग के बीच एक खाई बनी रही है, लेकिन अब शैक्षणिक स्तर पर विशेष रूप से NEP 2020 आने के पश्चात इसको हटाने के लिए, इसको पाटने के लिए बड़े सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। आज कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्तर पर सैलरी पैकेज से ज़्यादा स्किल पैकेजेस पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए इंडस्ट्रीज एकेडमिया लिंकेज के तहत सीधे कंपनियों के विशेषज्ञों को बुलाकर पाठ्यक्रम डिज़ाइन करवाए जा रहे हैं। अब देखिए, इसी को देख लीजिए कि NEP 2020 में जो नया पाठ्यक्रम आया है, यह इतना जागरूकतापूर्ण है कि बच्चों का केवल रटंत विद्या नहीं है, यानी बच्चे रटेंगे, एग्ज़ाम देंगे और डिग्री पा के चले जाएंगे, बल्कि इसमें स्किल्स डाली गई ताकि बच्चों का बौद्धिक

0: आर्थिक विकास हो, मानसिक विकास हो, तो डिग्री कोर्सेज में अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अनिवार्य, 3 से 6 महीने की इंटर्नशिप भी जोड़ी गई है ताकि बच्चे केवल थ्योरी नहीं पढ़ें बल्कि असल कार्य क्षेत्र का अनुभव लें। जैसा कि हितोपदेश में भी कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वाम, पात्रत्वाम धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। जहाँ पात्रता, अब यहाँ पात्रता का अर्थ आज के समय में क्या होगा कि बाजार की जरूरतों के हिसाब से आपकी योग्यता होनी चाहिए। जब शिक्षा छात्रों को केवल डिग्री नहीं बल्कि पात्रता यानी कौशल देगी तभी उनमें रोजगार और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। आज के शैक्षणिक सुधार की इसी पात्रता को निखारने का काम कर रहे हैं ताकि उनके अंदर पात्रता आएगी, कुशलता आएगी, तो वो अपने जीवन में केवल जॉब नहीं ढूंढेंगे अपितु वो अपना स्किल डेवलपमेंट करके कुछ ना कुछ इनोवेशन करेंगे, स्टार्टअप कर लेंगे।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और कहा भी गया है कि हुनरमंद व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठ सकता, तो हमारे युवा आज के दौर में हुनर को निखार कर अपनी आर्थिक समृद्धि की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा देखने को भी मिलता है। अभी तक हमने बात की युवाओं के हुनर की, उनके लिए किए जा रहे प्रयासों की, लेकिन युवाओं का विकास सिर्फ तकनीकी काम या हुनर सीखने से ही नहीं होता बल्कि सामूहिक रूप से काम करने, खेलकूद और सामाजिक गतिविधियों से वे टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल जैसे जरूरी चीज़ें भी सीखते हैं और इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो ज़मीनी स्तर पर युवा मंडलों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के व्यक्तित्व विकास और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को निखारने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए और उसके क्या सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं, शिवम जी आपसे जानना चाहेंगे।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जब तक हमारा युवा खेल से नहीं जुड़ेगा तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य और बेहतर नहीं हो पाएगा। अगर इसमें हम विशेष रूप से बात करें तो माय भारत के माध्यम से हमारे जिलों में तमाम ऐसे गांवों में यूथ क्लब्स बनाए जाते हैं जिनके माध्यम से जो हमारे युवा साथी हैं उनको खेल, ना केवल खेल बल्कि उनके कौशल विकास को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा माय भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से हमारे जितने भी युवा साथी हैं उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको ऐसी कई फील्डों में अप्रेंटिस कराई जाती है, इंटर्नशिप कराई जाती है जी। कई ऐसे संस्थान हैं जहां पर उनको निःशुल्क कौशल विकास हो इसलिए उनको वहाँ पर इंटर्नशिप स्कीम चलाई जाती है। और अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो उसमें प्रैक्टिकल लर्निंग को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है जिसके माध्यम से हमारे जो युवा साथी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा तकनीकी ज्ञान है और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो सीख पाएँ। तो इस तरीके से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए माय भारत और जो हमारे युवा मंडल हैं उसके माध्यम से लगातार ऐसी गतिविधियाँ कराई जा रही हैं जिसके माध्यम से उनके कौशल का विकास भी बहुत आसानी से हो सके।
1: बिल्कुल ठीक कहा शिवम जी आपने, और अभी आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया, वे शुरुआत से ही अपने कार्यकाल 2014 से अगर हम बात करें तो स्किल और इनोवेशन को निखारने के लिए प्रयासरत हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश।
3: साथियों, दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है।
1: अनंदा, अगला सवाल मेरा आपसे है। आज की युवा लड़कियों की अगर हम बात करें तो पारंपरिक क्षेत्रों से हटकर टेक्नोलॉजी और उद्यमिता के नए क्षेत्रों में भी वे आगे आ रही हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि सिर्फ एक लीक से जुड़ी हुई पढ़ाई को करके वो कुछ खास प्रोफेशंस को ही अपनाती थी, लेकिन अब ये दौर बदल रहा है। इसको आप एक स्टूडेंट के तौर पर किस प्रकार से देखती हैं?
4: मुझे लगता है कि आजकल की लड़कियां पहले से कहीं ज़्यादा आत्मविश्वासी हैं। मैं खुद सिंगिंग सीख रही हूं और मैंने देखा है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता है हर चीज़ के लिए। और अब तो सोशल मीडिया आ गया है तो सोशल मीडिया में हम लोग अपना खुद का प्रचार करते हैं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलता है। आजकल की लड़कियां सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं बल्कि संगीत, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही हैं। ये बदलाव बहुत प्रेरणादायक है हर किसी के लिए।
1: बिल्कुल ठीक कहा आनंद आपने, और कई सारे क्षेत्रों में जो उत्कर्ष शिखरों तक पहुँची हैं वो महिलाएँ हैं और महिलाओं ने अपनी लीडरशिप क्वालिटी से भी अपने आप को साबित किया है। अभिषेक जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। आज का भारत तक की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टअप इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की गई है और हम बोल सकते हैं कि आज का

0: भारत स्टार्टअप इंडिया का भारत है। हमारे प्रदेश के युवा भी अब सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नए नए आइडियाज के साथ नौकरी देने वाले यानी एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं और बन भी रहे हैं। तकनीकी और व्यावहारिक कौशल किस प्रकार से हमारे युवाओं को सफल स्टार्टअप्स और नए बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित और सक्षम बना रहा है, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
1: हाँ बिल्कुल, यह मेरा खुद का भी अनुभव रहा है। पिछले 11 वर्षों में जब मैंने देखा है, प्रायः जब असेंबली होती है स्कूल में तो उस समय प्रेयर के पश्चात किसी भी बच्चे का जब बर्थडे होता है तो सभी विश करते हैं और फिर वह बोलता है कि मेरा नाम ये है, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम। तो उसमें मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द बच्चे कुछ ना कुछ स्टार्टअप की बातें करते हैं कि मुझे यह स्टार्टअप करना है, यह बिजनेसमैन बनना है, यह इस चीज़ को प्रोवाइड करना है। तो इस चीज़ को देखा जाए तो बच्चों की मानसिकता में बदलाव आया है और यह बदलते भारत की सबसे खूबसूरत तस्वीर भी है कि जहां युवा जॉब सीकर नहीं बन रहे हैं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनने की मानसिकता रख रहे हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, सिर्फ एक आइडिया होना ही काफ़ी नहीं होता, उस आइडिया को ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए आपके पास व्यवहारिक और तकनीकी कौशल होना बहुत ज़रूरी है। जब किसी युवा के पास कोडिंग, मैनेजमेंट या किसी विशिष्ट तकनीक का हुनर होता है तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। अब रही बात ये जो मैंने की हुनर की, तो नीति शतकम में महाकवि भर्तृहरि ने कहा है, हर्तुर याति न गोचरम किमपिशम पुष्णाति यत सर्वदा अप्यर्थभ्य प्रतिपाद्यमान मनिषम प्राप्नोति वृद्धिम पराम। यानी आपका हुनर और ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, यह हमेशा सुख देता है और बांटने पर यानी वर्तमान संदर्भ में बिजनेस या स्टार्टअप लगाने पर लगातार बढ़ता है। यही व्यवहारिक कौशल हमारे युवाओं को बिना किसी डर के जोखिम उठाने और सफल उद्यमी बनाने की शक्ति भी दे रहा है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक जी। शिवम जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, युवाओं में गजब का हुनर और आइडिया होता है लेकिन वित्तीय सहायता या सही मेंटरशिप न मिलने से वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। वोकल फॉर लोकल एक जो अभियान हमारे देश में शुरू हुआ उसने हमारे युवाओं के हुनर को अलग तरीके से निखार कर सामने लाया और उनकी बहुत सारी समस्याओं को भी ख़त्म किया। सरकार द्वारा युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही छोटे उद्यम शुरू करने के लिए कई प्रकार की बैंकिंग योजनाओं जैसे मुद्रा योजना और कई सारी सरकारी नीतियों का फायदा भी मिल रहा है, इसको किस प्रकार से देखते हैं?
2: देखिए, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सरकार द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे युवा साथी हैं विशेष रूप से, उनकी अगर हम चर्चा करें तो उनके लिए कई ऐसी स्कीम चलाई जा रही हैं जिनके माध्यम से सरकार चाहती है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है वो आत्मनिर्भर बने। और जब युवा आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत 2047 का, उसमें युवा अपनी भूमिका निभा सके। क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है तो हमारा जब ग्रामीण क्षेत्र का युवा आत्मनिर्भर होगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास में वो अपनी भूमिका निभाएगा। इसके तहत अगर हम बात करें तो मुद्रा योजना, एक मुद्रा योजना काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से पहले जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा मान लीजिए किसी भी कोई प्रोजेक्ट लेके अगर किसी बैंक के पास पहले जाते थे तो बैंक उनसे गारंटर मांगता था, उनसे पूछता था कि आपकी अगर मान लीजिए कोई हमारे ग्रामीण क्षेत्र का युवा है, कोई मछली पालन में कोई बेहतर काम करना चाहता है, कुक्कुट पालन में कार्य करना चाहता है, तो अगर उसने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया तो पहले के समय में जब वो बैंक के सामने अपना प्रोजेक्ट लेके जाता था तो कहीं ना कहीं बैंक से लोन देने से मना कर देता था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा ये जो मुद्रा योजना शुरू की गई है युवाओं को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। इसके माध्यम से युवा बड़ी इजीली अपना जो नए नए आइडियाज़ हैं, नए नए प्रोजेक्ट हैं, उसको बैंक के सामने ले जाती है और बैंक बड़ी आसानी से उन्हें लोन प्रदान करता है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चालू की गई है और उसके परिणाम आने वाले समय में हमारे देश के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए और बेहतर करेगा, ये आने वाले समय में हम लोग देखेंगे।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने शिवम जी, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख भी रहा है आज के दौर में हमारे कई किसान जो कि इनोवेशन को अपना कर एक उद्यमी किसान के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, वहीं कई सारे युवा छोटे छोटे उद्यमों को अपना कर डिजिटल रूप से उसको इनोवेट करके आगे बढ़ रहे हैं। 15 जुलाई का ये जो दिन है विश्व युवा कौशल दिवस, हमें याद दिलाता है कि युवाओं की ऊर्जा ही देश का भविष्य तय करती है और यदि उस ऊर्जा को सही हुनर का साथ मिल जाए तो तरक्की की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। अंत में आज विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रदेश के उन लाखों युवाओं को आप तीनों क्या सकारात्मक संदेश या गुरु मंत्र देना चाहेंगे जो अपने हुनर के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं? सबसे पहले अभिषेक जी आपसे।
1: हाँ जी, विश्व युवा कौशल दिवस पर सभी के लिए पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और यह संदेश यही है कि स्किल जो है बिना मेहनत के नहीं आती है। जैसा कहा गया है, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने, विक्रमार्जित सत्वस्य

0: स्वयमेव मृगेंद्रता, यानी कि जंगल में सिंह का ना तो कोई राज्याभिषेक करता है ना ही कोई संस्कार होता है। वह अपने पराक्रम और कौशल के बल पर खुद ही राजा बनता है। तो युवाओं को यही संदेश है कि युवाओं को भी अपने कौशल को खुद ही विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि जब युवा अपने कौशल को विकसित करेंगे तभी विकसित भारत 2047 तक का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वह पूरा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, योगः कर्मसु कौशलम्, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। यदि हम अपने कर्म में कुशलता रखेंगे, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी है और दृष्टिकोण भी रहा है बड़ा व्यापक कि हमें वोकल फॉर लोकल के लिए आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो यदि हमें यह करना है तो हमें अपने कर्मों में कुशलता लानी पड़ेगी और हमें अपनी मानसिकता को पूर्ण रूप से प्रबल बनाना पड़ेगा। साथ में हमें अपने स्वयं को विकसित करना पड़ेगा, यानी कि हम जब स्वयं अपने आत्म विकसित होंगे तभी राष्ट्र विकसित होगा। और यही संदेश मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहता हूँ।
1: शिवम जी, आपका संदेश हम जानना चाहेंगे।
2: बिल्कुल, मेरा तो हमारे युवा साथियों के लिए यही सबसे बड़ा संदेश है कि ऑलवेज बी लर्नर, हमेशा कुछ नए सीखने की आदत डालें। और आज के समय में अगर मैं कहूँ तो वास्तविकता में आज के समय में सबसे बड़ा धन जो है वो कौशल है। युवा जिस तरीके से अगर अपने कौशल का विकास करता रहेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में समय की मांग के अनुसार अपने कौशल का विकास करेगा तो वह निश्चित रूप से विकसित भारत 2047 में अपना योगदान दे सकेगा।
1: और आनंदा, आप युवाओं की तरफ से हमारे बीच में युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो क्या कुछ संदेश हमारे आज के युवाओं को देना चाहेंगी?
3: सबसे पहले आपको, आप सभी को वर्ल्ड यूथ स्किल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही कहना चाहूँगी कि युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि ऐसे अवसर भी मिलने चाहिए जहाँ पर वे अपनी स्किल्स को विकसित कर सकें और उन्हें वास्तविक जीवन में इस्तेमाल कर सकें। मेरी उम्मीद है कि शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और गांवों के युवाओं को भी अच्छी ट्रेनिंग, मेंटरशिप और करियर गाइडेंस मिले। अगर हर युवा को अपनी प्रतिभा दिखाने का समान अवसर मिलेगा तो हमारा देश तेजी से आगे बढ़ेगा।
1: बिल्कुल सही कहा आप सभी ने, एक बहुत ही सार्थक चर्चा रही। आपने बताया इस चर्चा में कि कौशल कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ बंद कमरों या किताबों से सीखी जाए, ये तो निरंतर अभ्यास और खुद को अपग्रेड करने का नाम है। आज की इस चर्चा से ये साफ है कि यदि हमारे प्रदेश और देश के युवाओं को सही समय पर सही हुनर का साथ मिल जाए तो वे न सिर्फ अपनी किस्मत बदल सकते हैं बल्कि देश और प्रदेश की तरक्की में भी एक नया अध्याय लिख सकते हैं। इस सार्थक चर्चा का सार यही है कि कर्म की कौशलता ही सफलता को निर्धारित करती है। प्रदेश की सुर्खियों में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रदेश की सुर्खियों में क्षेत्रीय समाचार एकांश का ये कार्यक्रम था। इसमें विषय था विश्व युवा कौशल दिवस। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए आपको अब एक सूचना दे दें। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण साझा, लाइक और कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिसमें समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलाने की संभावना हो पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री

0: प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वो केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोमेश गौर का है और वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। हरदा जिले में बीते दिनों मानसून की दस्तक के साथ मौसम ने करवट ली। शुरुआती बारिश के बाद किसानों ने बड़े उत्साह के साथ सोयाबीन, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुआई पूरी की। हालांकि लगातार बारिश से कई स्थानों पर नदी नाले उफान पर आ गए, ग्रामीण मार्ग प्रभावित हुए और कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी। बारिश थमने और धूप निकलने से लोगों को राहत मिली तथा जनजीवन पुनः सामान्य होने लगा। जिले के वनांचल क्षेत्र के उन किसानों के लिए शासन ने नई व्यवस्था लागू की है जिनके पास भूमि का पट्टा या वनाधिकार प्रमाण पत्र नहीं है। अब ऐसे किसान स्वघोषणा पत्र के आधार पर खाद बीज के लिए ई टोकन प्राप्त कर सकेंगे। जिले के खिरकिया रेलवे ओवरब्रिज परियोजना के लिए आईआईटी मुंबई की विशेषज्ञ टीम ने बीते दिनों ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ अलाइनमेंट का निरीक्षण किया। करीब 3 वर्ष से लंबित इस परियोजना को लेकर उम्मीद जताई गई है कि तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ सकेगा। हरदा जिले में वट सावित्री पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा के साथ बीते दिनों मनाया गया। बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर 108 परिक्रमा लगाई और परिवार की सुख समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य की कामना की। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र की यदि बात करें तो लॉयंस क्लब हरदा अंबर ने निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन बीते दिनों किया। इस शिविर में मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को ऑपरेशन के लिए भोपाल भेजा गया। वहीं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर जिले के वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान भी किया गया। जन जागरूकता के क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा जिले में सेफ क्लिक 2.0 अभियान का आयोजन किया गया, जिस अभियान के तहत राजा बरारी गाँव में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जिला जेल हरदा में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आध्यात्मिक एवं समाज सुधार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीते दिनों जिले में आयोजित पौधरोपण अभियान, स्वास्थ्य शिविर, सम्मान समारोह, स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रमों ने जिले की सामाजिक सक्रियता को नई दिशा दी। पुलिस विभाग में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया बीते दिनों पूरी हो गई। विभागीय पदोन्नति समिति ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत कुल 109 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। हरदा जिले में दस्तक सह स्टॉप डायरिया कैंपेन का पहला चरण 31 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। इसके लिए जिले के अनुमानित 69,922 बच्चों को सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। कोष एवं लेखा

संचालनालय द्वारा आईएफएमआईएस पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए जिले में 16 और 17 जुलाई को आईएफएमआईएस केयर्स कैंप लगाया जाएगा। मेरा युवा भारत अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक बीते दिनों कलेक्टर सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में उन्होंने जिले में पोर्टल पर 15 से 29 आयु वर्ग के अधिक से अधिक युवाओं का पंजीयन, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय और वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हरदा जिले में ग्रीष्मकालीन फसल मूंग का समर्थन मूल्य पर उपार्जन 1 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जा रहा है। जिले में किसानों की सुविधा के लिए 40 ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर बीते शनिवार को एडीआर सेंटर में स्कूली बच्चों के लिए विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। न्यायाधीश चंद्रशेखर राठौर ने उपस्थित बच्चों को बताया कि भारत वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि जागरूक नागरिक बनकर वे समाज में जनसंख्या नियंत्रण, लैंगिक समानता, शिक्षा के प्रसार और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हरदा कलेक्टर ने जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समुदाय में जागरूकता लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन विकसित करने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड प्रतिनिधियों से चर्चा की जाए। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड हरदा वृत्त ने विद्युत चोरी और अनाधिकृत विद्युत उपयोग पर लगाम लगाने के लिए विशेष सघन जांच अभियान चलाया। विद्युत अधिनियम एवं कंपनी के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हुए लगभग 1,15,35,000 रुपए की बिलिंग की गई। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जनपद पंचायत हरदा ने हंडिया क्षेत्र के नर्मदा तट के पास की दुकानों में पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये जारी आदेश 9 जुलाई से प्रभावी हो गया है। पहली बार उल्लंघन करने पर 200 रुपए का आर्थिक दंड तथा दूसरी बार उल्लंघन करने पर 500 रुपए का आर्थिक दंड और तीसरी बार या बार बार उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सील करने या लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। हरदा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ज़िले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी हरदा ज़िले की चिट्ठी। आलेख लोमेश कुमार गौर का था, वाचन था अभिषेक कटियार का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला संसार।

रिमझिम फुहारें, खुशियां बरसाएं, हर दिन आपका खास बनाएं। नमस्कार सखियों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा दुबे। स्वागत है आपका कार्यक्रम महिला संसार में। सखियों, हम सभी अपने अपने किचन में डेली काम करते हैं और कई सारी डिशेस भी बनाते हैं। इसका एक अच्छा रिजल्ट तो यह है कि हमें स्वादिष्ट डिशेस खाने को मिलती हैं, तो दूसरी तरफ डेली हमारे किचन से ढेर सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है। सब्जियों या फलों के छिलके हों या दाल चावल धोने के बाद बचा हुआ पानी हो, अक्सर हम इन सभी चीज़ों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। ये वेस्ट मटेरियल हमारे बहुत काम आ सकता है। इससे जैविक खाद बनाई जा सकती है। इसे बनाना बहुत आसान है। इससे पौधों को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और किचन वेस्ट उपयोगी बन जाता है। नींबू और संतरे के छिलकों से प्राकृतिक क्लीनर या रूम फ्रेशनर भी बन सकता है। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है, उसका उपयोग पौधों के लिए खाद के रूप में या दुर्गंध दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। प्याज और लहसुन से आप मसाला तैयार करती हैं, सब्जियों को स्वादिष्ट बनाती हैं। इसके छिलकों को फेंकने के बजाय इसका उपयोग सूप या स्टॉक बनाने में कर सकती हैं। सब्जियों के

छिलकों से भी वेजिटेबल स्टॉक तैयार किया जा सकता है। बचे हुए फल यदि खाने योग्य हैं तो उनसे जैम या स्मूदी बना सकती हैं। रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल करें, किचन वेस्ट से बेस्ट बनाएं। सखियों, आज है बुधवार और आप सब जानती ही हैं कि आज के दिन हम आपको सुनवाते हैं शीर्षक गीत। आज का शीर्षक है ड्रिम जिम। तो सखियों, लेते हैं कार्यक्रम के पहले गीत का आनंद।

सख्योर रिमझिम का अर्थ होता है वर्षा की धीमी और हल्की फुहार या छोटी छोटी बूंदों का लगातार गिरना। यह शब्द सुहावने और मध्यम गति के बारिश के मौसम को दर्शाता है जिसमें तेज आवाज़ नहीं होती। इसे अंग्रेजी में ड्रिजल भी कहा जाता है। और अगर ऐसे मौसम में आप कहीं घूमने निकल जाएं, तो यकीन मानिए घूमने का मज़ा दोगुना हो जाता है। सखियों, रिमझिम मौसम के रंग में ही भीगे गीत जब कानों को सुनाई देते हैं तो तन और मन दोनों ही झूम उठता है। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

सखियों, रिमझिम फुहारें जब धरती पर गिरती हैं तो मानो पूरा वातावरण जीवंत हो उठता है। चारों तरफ हरियाली की ताजगी, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और ठंडी हवाओं का स्पर्श मन को सुकून से भर देता है। ऐसे सुहावने मौसम में मन करता है कि रोज़मर्रा की भागदौड़ से दूर कहीं प्रकृति की गोद में निकल जाएं, जहां बारिश की हर बूंद का आनंद ले सकें। यह मौसम केवल तन ही नहीं बल्कि मन को भी तरोताज़ा कर देता है और जीवन में नई उमंग, ऊर्जा तथा खुशियों का संचार करता है। सखियों, रिमझिम फुहारों में डूबा कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं और अपने मन के आनंद को बढ़ा लेते हैं।

रिमझिम बारिश में गर्मा गर्म और चटपटे व्यंजन खाने का मजा ही कुछ और है। आज बात करते हैं मक्के या भुट्टे से बनने वाली रेसिपी। सखियों, भुट्टा या स्वीट कॉर्न विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एक पौष्टिक और ऊर्जावान स्नैक है। स्वीट कॉर्न पाचन को बेहतर बनाता है। यह दिल की सेहत, आँखों की सेहत दोनों के लिए फायदेमंद है। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। यह आयरन और फॉलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है जो खून की कमी को दूर करता है। चलिए, जब इतने लाभ छुपे हैं भुट्टे में, तो क्यों ना मौसम को देखते हुए झटपट बनने वाली भुट्टे की चाट बना लेते हैं। सबसे पहले भुट्टे के दाने अलग करके नमक डालकर उबाल लीजिए। उबालने के बाद दानों के ऊपर गरम मक्खन, नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला अच्छे से मिलाइए। हरी धनिया के पत्ते ऊपर से डालकर गर्मा गर्म चाट परोसिए। यह डिश झटपट बन जाती है और शरीर को न्यूट्रिशन भी दे देती है। सखियों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये डिश। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

टिमटिम बारिश, प्यारा मौसम, हमेशा खुश रहे आपका जीवन। सखियों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम महिला संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। दीजिए अनुमति आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा दुबे को। नमस्कार।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाला सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहान सुनना न भूलिए प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित आसाकरण शर्मा का गायन। राग है भैरव।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इसमें आज आपने सुना पंडित आसकरण शर्मा का गायन राग था भैरव। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा

0: कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। वर्तमान में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कृषक कल्याण वर्ष के तहत आयोजित इस महोत्सव के दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी, प्राकृतिक एवं जैविक खेती सहित शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बलराम कृषि महोत्सव इस माह के दौरान इंदौर के अलावा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से आबूधाबी की शुरुआत भी करेंगे। ये सेवा सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री इंदौर जिला चिकित्सालय के नवनिर्मित 300 बिस्तरी भवन का लोकार्पण भी करेंगे। मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा है कि 20 से 24 जुलाई तक विधानसभा सत्र चलेगा। इस सत्र के दौरान 14 विधेयक लाए जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार आज अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, रीवा, मऊगंज और सतना समेत प्रदेश के 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है और ओमान में आयोजित होने वाली यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2026 के लिए मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के 4 खिलाड़ियों आयुष, करण, महक और नौशीन का चयन भारतीय टीम में किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से लेकर 11 तक। तो हमें कार्यक्रम में फोन करें और अपने पसंद के गीत सुने, और इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर जो है 2660902 और एसटीडी कोड है 0755। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
3: हेलो,
2: नमस्कार।
3: बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ मैडम।
2: उज्जैन से कन्हैयालाल जी, कैसे हैं आप?
3: बहुत बढ़िया।
2: क्या चल रहा है?
3: चल रहा है, खेती का काम कर रहे हैं और ये दौरे चला रहे हैं खेत के अंदर। हमने सोचा कि अब लगा दे हैं, क्या है कि याद आ गई है।
2: अरे वाह, किस चीज की खेती अभी कर रहे हैं आप? क्या लगाया हुआ है?
3: खेती करते हैं मैडम उनका।
2: अच्छा, सोयाबीन लगा हुआ है।
3: हाँ,
2: अरे वाह। और खेती करते हुए आप गीत सुन रहे हैं?
3: हाँ जी, गीत सुना दीजिए बारिश का।
2: बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
3: वो मेघारे मेघारे मत पड़ जाएगा, ये प्यासा सावन का बहुत बढ़िया है
2: जी। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है।
3: हाँ हाँ। मेघारे मेघारे मत पड़ जाएगा, आज तू प्रेम का सीधे।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया आपने।
3: मैं गायक कलाकार भी हूँ मैडम।
2: अरे वाह, अरे वाह।
3: वो क्या था, सुंदरकांड वगैरह सभी में जाता हूँ, रामायण वगैरह वगैरह में सभी में जाता हूँ।
2: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब आपको आपकी पसंद का ये गीत सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में।
3: ओके ओके, धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार,
1: नमस्ते।
0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्ते मैडम
0: जी, नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: मैं पिंडरी जिला मंडला से सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम।
0: मंडला से सुमत कुमार जैन जी, कैसे हैं आप?
1: पिंडरी जिला मंडला
0: जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ अभी तक तो।
0: अभी तक मतलब क्या होने वाला है?
1: अब ऊपर वाले की मर्जी, आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा।
0: अरे नहीं, सब बढ़िया ही
1: अभी
0: रहेगा।
1: तो आपसे बात कर रहा हूँ, जब तक तो बढ़िया।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और क्या करते हैं आप सुमत जी?
1: मैं रिटायर शिक्षक हूँ मैडम।
0: आप रिटायर्ड शिक्षक हैं,
1: जी
0: क्या
1: जी
0: पढ़ाते थे आप?
1: मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था, सोशल साइंस।
0: कितना समय हो गया आपके रिटायरमेंट को?
1: 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 21 में रिटायर हुआ था।
0: अच्छा, तो अब आप क्या करते हैं, मतलब कैसे दिखाई देता है आपका जीवन, जो समय है वो कैसे व्यतीत करते हैं?
1: पहले मैं सरकारी नौकर था मैडम, अब मैं घर का नौकर हूँ।
0: अरे वाह, ये भी अच्छी बात है, घर
1: जी
0: में
1: जी
0: घर वालों की सेवा करना बड़ी अच्छी चीज़ है। चलिए, तो फिर आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं? कार्यक्रम है, फोन करें, गीत सुने।
1: अच्छा जी मैडम, आप सुना दीजिए, पग घुंघरू बांध नीरा नाची रे, नमक हलाल का।
0: नमक हलाल फिल्म से बहुत अच्छा
1: मेरे
0: गीत है।
1: साथी हैं कृपाल पटेल, कमला प्रसाद शर्मा, राधे श्याम केवट, मोहम्मद मोहराली। इन लोग भी आप लोगों को फोन लगाते रहते हैं, लेकिन फोन बहुत लगता ही नहीं है। उंगलियां दर्द करने लगती जब जाके लगता है।
0: जी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो
1: हाँ,
0: कोशिश करते
1: आपका
0: हैं।
1: कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है ना मैडम, इसलिए।
0: जी
1: और आप लोगों की वाणी और आप लोगों की बात करने का तरीका, लहजा बहुत ही शानदार है, और कार्यक्रम भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं। बात आपकी, गीत हमारे घर के जो कार्यक्रम आता है उसमें अच्छे विषय उठाते हैं आप लोग, जिससे बहुत ही ज्ञान वर्धक भी होता है और लोगों को अपने विचार रखने में भी बहुत आनंद आता है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप श्रोताओं के कारण ही है,
1: जी
0: आपका
1: जी
0: ही प्यार है।
1: नहीं, आप लोगों की ऐसी सोच और आप लोगों का ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करने का तरीका
0: जी
1: जो लोगों तक पहुंचे, ऐसी सोच भी और ऐसे तरीका को अपनाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत धन्यवाद है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी,
1: जी
0: कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए भी। और अब आपको आपके पसंद का गीत, आपको और आपके मित्रों को आपकी पसंद
1: जी
0: का एक गीत सुनवा देते हैं, किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म नमक
1: जी
0: हलाल
1: जी
0: से।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने
1: नमस्कार,
0: जी। किन से बात हो रही है मेरी?
1: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर तेंदुखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम,
0: ओम प्रकाश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी हैं।
0: क्या चल रहा है, कैसा मौसम है?
1: मौसम तो बदल हो रहे हैं, कहीं धूप निकल रही है, बस दुकान पर बैठे हुए हैं।
0: अच्छा, किस चीज की दुकान है आपकी?
1: हमारी कपड़े की दुकान है, बस दुकान पर बैठते हैं और अपने आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: तो कौन सा गीत सुनेंगे आज कार्यक्रम में, बताएं?
1: आज हम गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है जवाब हम देंगे। गीत के बोल हैं, हैरान हूँ मैं आपकी इन

0: हाथों को टेक कर।
1: ये अनुराधा पौडवाल जी और शब्बीर कुमार की आवाज में ये गीत है।
0: जी सभी
1: बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं ये गीत ओम प्रकाश जी।
0: दोस्तों के लिए
1: जी
0: डेडिकेट रहेगा। परिवार का नाम लेना चाहते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमारे परिवार में श्रीमती किरण नेमा है और आकाश नेमा, विकास नेमा, नंदिनी नेमा, शुभांश नेमा, वो सारा नेमा परिवार है।
1: आपके परिवार और आपके साथियों के लिए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत, जवाब हम देंगे फिल्म से। बहुत बहुत
0: नमस्कार।
1: धन्यवाद। नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करने
1: हेलो
0: की सुने।
1: नमस्कार मैडम,
0: नमस्ते, किन से बात हो रही है?
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
1: भोपाल में बारिश वारिश हो रही है? नहीं हो रही।
0: भोपाल में बारिश थोड़ी सी कम हो रही है, थोड़ी और हो जाएगी तो अच्छा लगेगा।
1: यहाँ तो गर्मी पड़ रही है।
0: हाँ
1: गाना बता दूँ?
0: हाँ बिल्कुल, गाना बता दीजिए।
1: भीगी रात का कैसे तुम देखो,
0: मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर
1: सुमन
0: की
1: कल्याण
0: आवाज में।
1: लता जी की आवाज में, ऐसे तुम देखो कि बग जाए कहीं। ठीक
0: बिल्कुल, ये गीत हमारे पास उपलब्ध है। अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: है, धन्यवाद
0: बहुत
1: तुम्हें,
0: बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के
1: धन्यवाद।
0: लिए।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हाँ मैडम नमस्ते, मैं सुमित सिंह बात कर रहा हूँ, एमपी धार से।
0: धार से सुमित सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ जी।
0: क्या चल रहा है धार में?
1: जी बस मेरी म्यूजिक के क्षेत्र में जॉब है, म्यूजिक कॉलेज में
0: हाँ,
1: हूँ मैं।
0: तो आप गाना सिखाते हैं या कोई वाद्य यंत्र सिखाते
1: नहीं
0: हैं?
1: मैं मेरा जो विषय है वोकल है, मैं वोकल सिखाता हूँ जी।
0: अच्छा जी, ठीक है। तो कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं बताएं, संगीत कितनी
1: आप
0: बातें होती
1: मुझे
0: हैं?
1: सुना दीजिए, आग और शोला फिल्म का गीत है, अनुराधा पौडवाल जी और मनोहर उदास जी की आवाज में, अरे बरसा।
0: बिल्कुल, ये गीत उपलब्ध है हमारे पास, आपको सुनवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए सुमित जी।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने
1: हेलो, कौन
0: जी। नमस्कार
1: बोल रहे हैं आप?
0: जी, मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: मेरे को भी गाना सुनना है साहब। कौन बोल रहे हैं आप?
0: बिल्कुल सुनवाएंगे हम आपको। आपका नाम बता दीजिए। मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: जी हाँ, मेरा नाम सरला चावड़ा है।
0: सरला जी,
1: जी हाँ,
0: कहाँ से बात कर रही हैं सरला जी?
1: मैं रतलाम से।
0: रतलाम से फोन कर रही हैं, कार्यक्रम सुन रही हैं हमारा।
1: जी हाँ,
0: अच्छा ठीक है, क्या करती हैं सरला जी?
1: मैं टीचर हूँ साहब।
0: टीचर हैं। अच्छा बताएं, अब कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताएं।
1: मैं सुनूंगी फिल्म नमस्ते जी का, मेरे दो नैना मतवारे।
0: लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये
1: जी
0: गीत
1: हाँ,
0: है,
1: जी हाँ, जी
0: आपको
1: हाँ।
0: सुनवा देते हैं। सरला जी, बहुत अच्छी आपकी पसंद है।
1: मैं 1971 से सुन रही गाने।
0: अरे वाह।
1: मैं कक्षा कक्षा एक में

0: थी तब से ही गाने सुन रही हूँ और मुझे सभी गाने बेहद पसंद है, और आकांक्षा दीदी और विद्या जैन और सरिता रावत जो भी है वो जितनी भी है उनको बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है उनकी आवाज। उन्होंने फूलों के बारे में जानकारी बताई आकांक्षा दीदी ने, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी, आपका जो इतना प्यार है मैं बिल्कुल सबके साथ साझा करूंगी
0: जी। हाँ जी, हाँ थैंक यू
1: जी।
0: वेरी मच।
1: अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के
0: जी
1: लिए।
0: हाँ, थैंक यू वेरी मच।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हाँ, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम से। हाँ,
0: जी
1: मैं जिला पन्ना मध्य प्रदेश से हर्षवर्धन पांडे बात कर रहा हूँ।
0: हर्षवर्धन पांडे जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ, वो ठीक है। और इस समय भोपाल का मौसम कैसा है? बरसात वगैरह हो रही है? और पन्ना में तो नहीं हो रही है, पन्ना में तो ये जो है जो धूप निकली है। भोपाल का मौसम आप बता दीजिए।
0: हर्षवर्धन जी, पन्ना में जैसी धूप निकली है वैसी ही भोपाल में निकली हुई है, थोड़े बहुत बादल हो जाते हैं।
1: हाँ, वो मुझे आज वो जो है बरसात से ही संबंधित गीत सुनवा दिए। एक काला बाजार फिल्म का गीत
0: जी
1: है मोहम्मद रफी और गीता दत्त के पर में,
0: हाँ जी,
1: ये रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। ये फिल्म 1960 में बनी थी और ये इसी का गीत सुनना है।

0: संगीतकार इसके जगदीप बर्मन है, ये वाला गीत सुनवा दीजिए काला बाजार।
1: बिल्कुल, बड़ी सुंदर गीत की फरमाइश की है आपने। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए अब सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हेलो।
0: हेलो
1: हाँ जी, नमस्ते मैडम जी।
0: जी, किनसे बात हो रही है?
1: ये मैं विक्रम मालवी बोला ना, गुलबलोच से।
0: विक्रम मालवी जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं बढ़िया हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं, मैं सुन नहीं सकी।
1: ये मैं मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबलोच, तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: क्या करते हैं विक्रम जी?
1: जी मैं वेयरहाउस में काम करता हूँ मैडम जी, और इसके अलावा खेती का काम करते हैं।
0: अच्छा, खेती का काम भी करते हैं। क्या उगा रहे हैं अभी?
1: अभी सोयाबीन बोई है मैडम जी।
0: अच्छा,
1: जी
0: कार्यक्रम है, फोन करें, गीत सुने, तो कौन सा गीत सुनना
1: जी
0: चाहते
1: गीत
0: हैं?
1: सुनना है मुझे, फिल्म है करण अर्जुन का, तो
0: कौन सा
1: करण
0: गीत?
1: अर्जुन का वो वाला गीत सुना दीजिए, हे माँ काली। जी
0: कुमार सानू की आवाज में साथ है
1: जी
0: अलका याग्निक।
1: जी मैडम जी
0: बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं। विक्रम जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
1: जी आपको भी देवो तो धन्यवाद मैडम जी।
2: खड्गम चक्र गदेषु चाप परिदान शूलम्बुशुण्डी शिर शङ्खम् सन्दधति करै

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 11:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।

भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। वर्तमान में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर के लक्ष्मी नगर अनाज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कृषक कल्याण वर्ष के तहत आयोजित इस महोत्सव के दौरान किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती सहित शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बलराम कृषि महोत्सव इस माह के दौरान इंदौर के अलावा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से अबूधाबी की शुरुआत भी करेंगे। ये सेवा सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार

सोमवार को उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री इंदौर जिला चिकित्सालय के नवनिर्मित 300 बिस्तरीय भवन का लोकार्पण भी करेंगे। मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर में होगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि 20 से 24 जुलाई तक विधानसभा का सत्र चलेगा। इस सत्र के दौरान 14 विधेयक लाए जाएंगे। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार आज अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, रीवा, मऊगंज और सतना समेत प्रदेश के 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर ने, और गांव चौहलता से संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान, कुणाल ने। आप सबने पसंद किया है खिलाड़ी फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है अलका याग्निक और अभिजीत ने, गीत अनवर सागर का और संगीत जतिन ललित का।

और अब सुनिए परदेश फिल्म का ये नगमा। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का गीत और नदीम श्रवण का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, गांव चौहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन मुस्कान कुणाल, मालवा रेडियो श्रोता संघ से प्रमिलागंज, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोड जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजू वाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए परदेश फिल्म का ये गीत।

और अब सुनिए, पिघलता आसमान फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में इंदिवर के लिखे गीत को सुरों में सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है सारनी जिला बैतूल।

बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारसमणि, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

0: या अलीशा, नेहा, ज्योति, चांदनी व उनकी सखियाँ, महाराष्ट्र बीट शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, रामनिवास अग्रवाल, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। आप सबने पसंद किया है मोहब्बत फिल्म का ये गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की, आनंद बख्शी का गीत और जतिन ललित का संगीत।
1: नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, सुनते हैं कुछ संदेश।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। 1 सूचना सुनिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी करती है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर विश्वास करें।

किसी भी प्रकार की संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक हंसना मनाहे का 13वां भाग।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। राजेश मिश्रा, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं।
1: ग्रामीण अंचल में और चाहे शहर में स्कूली शिक्षा की ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और काफी अंतर हुआ है, फिर भी हम हास्य व्यंग कलाकार उसमें कुछ खोजने को और अपनी कुछ कल्पनाएं आप तक पेश करते हैं जो नहीं भी दिखता है, तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होता होगा या ऐसा होना चाहिए। तो लीजिए, एक स्कूल की ओर आपको ले चल रहे हैं कि स्कूल में गुरुजी ने विद्यार्थी से कहा, बेटा ये बताओ कि जब मैं घर से पैदल स्कूल जाता हूँ तो मुझको 30 मिनट लगता है, आधा घंटा, और जब मैं किसी की साइकिल में जाता हूँ तो मुझको 20 मिनट लगते हैं। कितना लगता है? 20 मिनट। और जब मैं स्कूटर में जाता हूँ किसी की बैठकर तो मुझको 10 मिनट लगते हैं। तो बेटा मेरी उम्र बताओ कि मेरी उम्र कितनी है?
2: एक छात्र खड़ा हुआ,
3: पांडा जी आपकी उम्र ना 50 साल।
2: देखो कितना होशियार बच्चा है, इतने बच्चों में कोई भी बच्चा ये नहीं बता पाया कि जब मैं पैदल आता हूँ स्कूल आधा घंटा, जब मैं साइकिल में आता हूँ 20 मिनट, स्कूटर में 10 मिनट, तो गुरुजी की उम्र 50 साल। ये कैसे बताओ, बताओ बच्चों, उनको बताओ कैसे निकाला तुम?
3: पंडित जी हमारे घर के बाजू में एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 25 साल है, वो आधा पागल है।
1: गले बैठ जाओ बेवकूफ, कभी जीवन में पास नहीं होगे। दूसरी एक और बड़ी समस्या सामने आई उस गांव में कि एक बच्चे को, बाकी बच्चों को तो बहुत प्यार से नहीं बोलते थे, मारपीट करते रहते थे, किंतु एक बच्चे को ज्यादा ही प्यार करते थे। बेटा कैसे हो?
3: अच्छा पंडित जी।
1: अपनी अम्मा से बोलना, पंडित जी ने राम राम पहुंचाइए, नमस्ते। ठीक है, बच्चा हमेशा जाकर अपने घर में मैसेज दे देता था कि माँ, माँ साहब ने आपको नमस्ते बोला है, राम राम पहुंचाइए। अब चूंकि बच्चा पढ़ रहा था और उनको आशय ये समझ में नहीं आता था कि ये नमस्ते का क्या आशय, ये क्रम चलता रहा। एक दिन उनने अपने पति को बताया कि लोग अगर सुनेंगे तो बड़ा खराब लगेगा, ये नमस्ते क्यों पहुंचाते हैं इनके गुरुजी। तो एक दिन उनने पति पत्नी ने प्लान बना लिया और आपस में, और जो ही बच्चे ने गुरुजी से

0: बोला, गुरुजी प्रणाम। बेटा अपनी माताजी से नमस्ते बोल दिया था?
1: हाँ बोल दिया था, माताजी के नहीं थी कि पिताजी दूसरे शहर जा रहे हैं, आपको बुलाया है।
0: माँ साहब बढ़िया खुश घर पहुंचे। घर पहुंचे इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। उनके शिष्य की माँ बोली,
1: लगता है कि वो ये आ गए हैं।
0: तो क्या करना है?
1: करना कुछ नहीं, आप हमारी साड़ी पहन लो, मैं बोल दूंगी कि पड़ोस के आए हैं ये आटा पीसने, जो घर में पुरानी चक्की इसमें आटा पीसना गेहूं पीसना है, तो वो आए हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं।
0: मरता क्या ना करता, माँ साहब ने जल्दी जल्दी जल्दी धोती पहन के अपना बैठ गए गेहूं पीसने के लिए। और जो ही आए उनके पापा बात की और इशारा किया वो चले गए। जब वो चले गए तो माँ साहब ने जल्दी से धोती उतारी अपना भागे। भागने के बाद एक दिन बच्चे ने बोला,
1: माँ साहब माँ पूछ रही थी बहुत दिन से आपने नमस्ते नहीं पहुंचाई है।
0: तो माँ साहब बोले, क्यों तुम्हारे घर का आटा फिर खत्म हो गया क्या? एक डॉक्टर साहब थे और जैसा उनकी पत्नी भी डॉक्टर, पति पत्नी दोनों। एक दिन पत्नी ने शिकायत की पति से और कहने लगी,
1: सुनिए
0: क्या बात है?
1: है ना आप हॉस्पिटल चले जाते हो ना, सामने हॉस्टल में लड़के रहते हैं ना, दिन के 12 बजते मेरे को देखना चालू कर देते, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप इनको मना कर सकते हैं क्या?
0: बोले, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मना करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, मैं अब भी जाता हूँ। हॉस्टल पहुंचे, हॉस्टल में लड़के रहते, कहने देखिए आप लोग यहाँ ढंग से रहिए, क्यों क्या बात है, क्या बात है, दिन के 12 बजते हैं आप लोग मेरी पत्नी को देखना चालू कर देते हैं, ढंग है आप लोगों का, आप लोग नौजवान हैं, अच्छी बात नहीं। बोले डॉक्टर साहब पहले अपने घर के सामने का बोर्ड अलग करिए, क्यों क्या बात है, क्या बात है, देखिए क्या लिखा, क्या लिखा, डॉक्टर सुधा रानी, देखने का समय 12 से 2। छोटी छोटी बातें बड़ी मजेदार हो जाती हैं। मैं कभी घड़ी नहीं पहनता हूँ। मेरे से किसी ने पूछा कि राजेश मिश्रा आप घड़ी क्यों नहीं पहनते? मैंने कहा मैं घड़ी इसलिए नहीं पहनता हूँ कि हर आधे घंटे में हिंदुस्तान में लोग समय अपने आप बताते हैं। अब आप सोच रहे हो कैसे बताते हैं? आप कहीं विलंब से पहुंचे तो क्या यार भैया अभी आ रहे हो, 2:30 बज रहे हैं यार। ये हम और आपके बीच में अपने आप जो हास्य मिलता है हास्य कलाकारों को, वो ऐसे ही मिलता है कि हम जो बोलते हैं आप जो बोलते हैं वही सुन रहे हैं वही समझ रहे हैं। अब इसमें कहा अच्छा 2:30 बज रहा है यार तुम गजब कर दिया, थोड़ी देर हो गया। जब काफी देर अपन बैठ जाते हैं तो फिर कोई कहेगा चलो यार भैया 3 बज गए। तो अपन को पता लग जाता 3 बज गए, काहे को अपन इतनी बड़ा वजन टांग कर चलें, और समय की कीमत अगर अपन ने समझी होती तो अपन यहाँ ये हास्य कलाकारी क्यों करते? फिर भी एक भाई साहब से मैंने पूछा कि भाई साहब कितना बजा है? कहले बज के 10 मिनट। मैंने सोचा कि चलो भाई बज के 10 मिनट, मैं समझ गया, अंदर ही अंदर मैं खुश हो गया। व्यक्ति की आदत होती है कि अगर उसको कोई पहचान रहा है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मैं बहुत, मतलब मुझे ये खुशी हुई कि यार ये व्यक्ति जान गया कि मैं हास्य कलाकार हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि प्रोग्राम चालू होना है, भैया कितना बज गया? बोले बज के 20 मिनट। मैंने कहा यार लगता है ये भी हास्य कलाकार होगा, हमको छेड़ने के चक्कर में है, तो मुझे फिर बुरा नहीं लगा। थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहा अब प्रोग्राम शुरू कराया जाए। मैंने भाई साहब टाइम कितना हुआ? बज के 30 मिनट। हमने देखो यार मैं हास्य कलाकार जरूर हूँ किंतु मुझे गुस्सा भी आ जाती है। कहें क्यों क्या बात है? अरे आप लगे हो बज के 10 मिनट, बज के 20 मिनट, बज के 30 मिनट, बताओ ना कितने बज। कहें भाई साहब मेरी गलती नहीं है, मेरी घड़ी का छोटा कांटा टूट गया है। बड़ा कांटा भर है वो घूम रहा है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बज के 20 मिनट, बज के 30 मिनट, बज के 40। मैं आप नाराज क्यों हो रहे? ये हास्य हमारे आपके बीच में मिल जाते हैं। कभी किसी का ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर को अगर आप एकदम, कभी कभी ऐसा माहौल आता कि लगातार ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, अब उसको अगर आप अधूरी बात करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे आदमी दुनिया से

चला गया हूं, और वो बात मैच भी करती जाती है, आप उसके घर भी बैठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाकई हो गया है। जैसे उन्होंने कहा भैया राजेश मिश्रा नहीं दिख रहे, वो तो गए। गए कब? लो आपको नहीं मालूम? सही में नहीं मालूम? अरे नहीं भगवान कसम बिल्कुल नहीं मालूम यार। कैसे कहा? अब अरे यार आज को समय कोई भरोसा है? हैं? आर्डर आ गो चले गए। अरे हमें तो पता ही नहीं, दो पर घर पे माताजी वगैरह है ना। अच्छा अच्छा अब माताजी के पास पहुंच। अब व्यक्ति इतना झूठा हो गया है कि बाहर तक तो कहो हंसता रहे, किंतु अगर किसी मरीज को देखने जाए तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते चेहरा बना लेगा, इतना बना लेगा कि इनसे बड़ा दुखी कोई है ही नहीं दुनिया में। किसी के यहाँ गमी में जाएगा तो बाहर तक हंसता रहेगा, घर के अंदर पहुंचते कहा हो गया था भैया, अरे कैसी अचानक, अरे यार भैया, अरे राम राम राम राम, कितने बच्चे हैं भैया? दो बच्चे। ओहो हो मिसेज, अब मिसेज क्या दो होंगी क्या? इतने तो गंभीर मत बनो जबरन के नाटक, इतना झूठ भरे तो नहीं करोगे एकदम पूछ बैठे कि मिसेज, अरे मिसेज भी तो एक ही होगी। चलो ये हो गया। अब यहाँ ट्रांसफर वाले उसमें आदमी बैठने गया, अब वो गया, अब देखिए संयोग बस, माता जी हाँ बेटा आओ, कहाँ है आज सुना हमें तो पता ही नहीं रहा। हाँ भैया हमें भी तो खुद ही अच्छा नहीं लग रहा, भैया नहीं है तो बिल्कुल इतना खराब लग रहा, हमें ऐसा लग रहा खाने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल ऐसा करता था आते ही साथ अम्मा, ए अम्मा तुम्हारे लाले सेव ले आए, तुम्हारे लाले अंगूर ले आए, अब आज है नहीं, ऐसा सूना लग रहा बिल्कुल। नहीं तो अम्मा उसमें क्या कर सकते बता, नहीं करने को तो अब आप लोग नेता आदमी हो, कुछ कर सकते। अम्मा हम लोग नेता हैं, नीचे चलती ऊपर नहीं चल पाती हम लोगों की। अब ऊपर में उनको ये लग रहा है कि दिल्ली की बात कर रहे हैं, वो ऊपर कहने अम्मा हम लोगों की तो नीचे ही चलती है, ऊपर तो चलती नहीं। हाँ बेटा ऊपर की पहुंच तो बड़ी अजीब ही होती है, किंतु अब चलो अब क्या करो, हम इंतजार कर रहे हैं उनका। अब पूरी विधा जो थी वो पूरी बदल गई, आदमी ये सोच रहा है कि वो ऊपर चले गए, वो ये सोच रहे हैं कि इनका ट्रांसफर हो गया, कभी किसी के अस्पताल में देखने जाओ। ये हास्य व्यंग आपको कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा, ये आपके समाज में मिलेगा। आप किसी को अस्पताल में देखने जाओ और मान लो वो डिस्चार्ज हो गया है, तो आपने काउंटर में पूछा भाई साहब राजेश मिश्रा, हाँ वो तो गए कब? एक घंटा पहले। अरे राम राम राम राम, ओहो हो मट्टी कब जाएगी? नहीं नहीं मरे नहीं है यार, नहीं नहीं आप बोले ना गए मतलब हॉस्पिटल से गए यार भैया। कभी आप अचानक घर में फोन करें, हेलो हाँ देखो यार मेरे को पासपोर्ट फोटो की जरूरत है, तो मैं भेज रहा हूँ चपरासी को, उसको पासपोर्ट फोटो दे देना। हाँ ठीक है। अब आप इंतजार करो पासपोर्ट फोटो का, अगर आपकी पत्नी को पासपोर्ट फोटो नहीं मिलती है तो तुरंत ग्रुप फोटो में से काट के पासपोर्ट बना के भेज देती। फिर आपने फोन लगाया, हेलो तुमने क्या फोटो भेज दी यार, क्या पेपर में देना है, गमी वाला समाचार देना है क्या कि राजेश मिश्रा नहीं रहे, ये तो इस टाइप की फोटो लग रही है। नहीं तो आपने बोला ना अर्जेंट चाहिए, अरे इतनी अर्जेंट नहीं चाहिए थी कि तुम ग्रुप में से काट के दे दो। हम और आपके बीच में ये हास्य हमेशा मिलता रहता है, हंसना मना है किंतु आप खोजिए, आप बस में जा रहे हैं तो वहां हास्य मिल जाता है, आपके बाजू में कोई बैठा हुआ है और आप उसको लगातार देखिए। अब एक व्यक्ति एक को देखा जा रहा, अब उसको शर्म लगी कि ये व्यक्ति मुझे क्यों देख रहा, थोड़ी देर इधर उधर देखता रहा, फिर उसने कहा भाई साहब क्या हो गया, आप एक घंटे से बैठे हो मुझे लगातार देखे जा रहे हो, बात क्या? नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात तो क्या है कि आपका और मेरी पत्नी का चेहरा बहुत मिलता है।

0: कहने फालतू बात नहीं करना। नहीं नहीं कहने सही बोल रहा हूँ भैया, बिल्कुल गजब बताया आपको। अब क्या बोले यार, हम एक घंटे से देख रहे हैं आपको और एक घंटे से हम मतलब क्या बोले यार, बिल्कुल डिक्टू। कहने फालतू बात नहीं करना, मैं फेंक दूंगा तुमको बाहर, समझ गए। बोल रहे हैं भाई साहब मैं फालतू नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सिर्फ मूछों का अंतर है, नहीं तो तुम बिल्कुल हमारी औरत के समान लगते हो। तो तुरंत वो व्यक्ति बोला, कहने मेरी मूछे कहाँ है? कहने मेरी औरत की मूछे है ना भैया।
1: हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
1: अरे हंसना मना है,
2: हंसना मना है।
1: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
2: हंसना मना है।
0: लीजिए, हंसना मना है इस कार्यक्रम के अंतर्गत कर्फ्यू या कभी भी 144 धारा जब भी देश में किसी भी कोने में लगती है तो हर अच्छे इंसान को तकलीफ होती है। और हमारे हिंदुस्तान की ये तासीर बिल्कुल नहीं है कि वो कर्फ्यू और 144 धारा पसंद कर सके, शायद कभी नहीं करेगा। खैर ये विषय अलग है, आपको उसमें भी मैं हास्य व्यंग्य दे रहा हूँ, इसे कहीं कोई अन्यथा ना ले कि किस प्रकार से हमें हास्य व्यंग्य उसमें मिल जाते हैं, दर्द में व्यंग्य। इसलिए हम मैसेज पहुँचाते हैं कि कभी आप तक ये बातें पहुँच जाएँ तो कर्फ्यू और दंगे फसादों से व्यक्ति दूर रहे। कर्फ्यू के दौरान में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है आम व्यक्ति की, और वो होती है पुलिस वालों से। लोग मुझसे पूछते हैं कि राजेश मिश्रा, हिंदुस्तान में व्यंग्य में स्टेज की दुनिया में जितना आप पुलिस वालों के लिए सुनाते हैं और हमेशा पुलिस वालों को छेड़ते हैं, आखिर क्या बात है? और मैं हर प्रोग्राम में बताता हूँ कि मेरी एक बहन की शादी धोखे से एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब के साथ हो गई है, इसलिए तमाम पुलिस वाले हमारे जीजा होते हैं। मजाक के दौरान में मैं उल्टा सीधा जीजा लोगों को से बोल देता हूँ, तो ये भी निवेदन कर लेता हूँ कि मंच से वो लोग उतनी दूरी बनाए रखें। कर्फ्यू के दौरान में बहुत से लोग बाहर से आते हैं, जो लोकल लोगों को, शहर के नेताओं को, समाज सेवियों को नहीं पहचान पाते हैं। तो सबसे पहले तो जो कर्फ्यू पास मिलते हैं उसको लोग लगाते हैं और उनको सबसे पहले मोहल्ले में दिखाने निकलेंगे। कहा भाई कर्फ्यू पास मिला यार, एसपी साहब ने बुलाया था और कलेक्टर साहब ने बोला कि एकता की अपील के लिए आप लोगों को निकलना है। अब ये तो अपन बोल रहे हैं, किंतु सामने वाला सोच रहा साफ लोगों को भी मालूम नहीं होगा एकता की अपील, पिताजी तो साथ में रहते नहीं है। समाज में एकता की अपील के लिए निकलेंगे, ठीक ठीक निकलो निकलो, आप तो निकल लो, ये वाली गली से निकलो, ये वाली तरफ बहुत ज्यादा तनाव है, जिस तरफ पुलिस थी उसी तरफ भाइयों ने भिजवा दिया। अब जो यहीं पहुंचे तो पुलिस ने, ऐश किधर, कर्फ्यू लगा हुआ? हाँ कर्फ्यू पास है, ये पास आपने कर्फ्यू पास फाड़ दिया, आप जानते मैं कौन हूँ? वीआईपी आदमी, 2-3 लठ मारो वीआईपी इसको। अरे ए, लठ मार दिया आपने, कहते अरे भाई साहब अरे कैसा कर रहे हैं मैं, पिट गए। जी हाँ ये वाला पास चलता है, पीठ में निशान आ गए आपके, हाँ पीठ में लठ के निशान आ गए, हाँ तो ये वाला पास दिखाते हुए चले जाना घर में, बता देना मैं पिट चुका हूँ, कर्फ्यू में बाहर मत निकलिए। सुबह सुबह पति पत्नी घूमने के लिए निकल पड़े, पुलिस वालों ने रोक लिया, ऐश किधर जा रहे हैं? पति बोला मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक कर्फ्यू में? बहुत बढ़िया, इसको जेल भेजो, ये बड़े गोल में मॉर्निंग वॉक करेगा। पत्नी बोली, साथ में पत्नी भी थी, पत्नी तुरंत बोली
3: नहीं इनको आप माफ कर दीजिए, हमने इनको मना भी किया था कि कर्फ्यू लगा हुआ है किंतु ये माने नहीं।
0: देखो पत्नी कितनी समझदार है, आदमी कितना बेवकूफ, एक लपाड़ा मारो अपने पति को। पुलिस बोल रही है कि पत्नी से कि पति को मारो, पत्नी

0: बोले नहीं हम इनको नहीं मारेंगे।
1: नहीं मारोगी तो ये जेल जाएगा, या तो एक चाटा मार दो तो घर ले जाओ, चाटा नहीं मारोगी तो हम इसको जेल भेज देंगे, आप अपने घर जाइए।
0: नहीं देखिए आप प्लीज।
1: अब पति खिसक, मार दो नो।
0: नहीं हम नहीं मारेंगे।
1: अरे लफड़ा कराओगे क्या?
0: नहीं हम नहीं मारेंगे।
1: मार दो ना, तुमसे बोल रहे हैं।
0: नहीं ना,
1: अकेले में पटकती रहोगी। कुछ लोग हमारे पास आए, बोले राजेश मिश्रा जी आपको नेता लोग भी चाहते हैं, कलाकार भी हो आप और आपको अधिकारी भी चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, कर्फ्यू में क्या पिटवाना चाहते हो आप? कहने नहीं भैया ऐसा था कि आप हमारे लिए, हम लोगों के यहाँ क्या है कि लैट्रिन नहीं है घर में, हम लोग सब सुलभ शौचालय जाते हैं, तो आप एक काम करवा दीजिए, सुबह शाम का हम लोगों के लिए पास बनवा दीजिए। और एक टाइम का इमरजेंसी बनवा दीजिए। तो मैंने कहा भैया पास बनवा दें। कहले हाँ क्या है उधर पुलिस की पॉइंट ड्यूटी लग गई है, हम लोग इधर से जाते हैं पुलिस रगेद देती है, तो आप लोग पकड़ में नहीं आते? नहीं पकड़ में तो आ सकते हैं, किंतु जो ही वो पुलिस पास में आती है हम लोग दौड़ते हैं और वो पीछे भागते हैं, जो ही वो पास में आते हैं तो वो फिसल जाते हैं। अरे मैंने कहा भाई साहब आपकी व्यवस्था जल्दी करें, नहीं तो मैं भी फिसल जाऊंगा। उन व्यक्तियों की समस्या हल नहीं हुई। उनमें से एक बेचारा सुबह सुबह नाली में बाहर बैठे हुआ था। सुनने में आपको जरूर अजीब लग रहा होगा, किंतु जब आप पूरी बात ये सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कर्फ्यू दंगे फजाद, इसमें आम गरीब आदमी कितना परेशान होता है कि वो बाहर नाली में बैठे ही था कि पुलिस आ गई। अरे तेरा मालूम नहीं कर्फ्यू लगा हैं? अरे साहब हमको क्या मालूम, इसमें भी कर्फ्यू लगा। बहस कर रहा, मारो इसको लट, उठो मार डालो साहब, अबे तो ना उठे। जो ही व्यक्ति फुर्सत हुआ पुलिस ने कहा चलो, कहने कपड़े पहन के आ जाएं। अपने यहाँ का आदमी बड़ा होशियार, ऊपर चला गया, नीचे पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, ऊपर से झांका, क्या बात है नीचे उतरो? नीचे नहीं उतरते। क्यों? नीचे कर्फ्यू लगा है।
2: और अब एक और हंसोड़ विनय जैन।
3: एक ऐसा आइटम सुनाने जा रहा हूँ जो कि व्यंग है। एक नेताजी जिनका की तगिया कलाम था, बात बात में कहा करते थे कि राजनीति हो गई, हर बात में वो कहा करते थे कि अरे साहब राजनीति हो गई। एक बार आप तमाम लोग भी जान लें, स्वर्ग और नरक में जाने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, जो लोग हम और आप अपनी अपनी जीवन लीला समाप्त करके ऊपर पहुँचते हैं तो जो इंटरव्यू में पास होता है वो स्वर्ग में जाता है, जो फेल होता है वो नरक में जाता है। और जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें जो नेताजी हैं उनका नंबर दो तीन लोगों के बाद आने वाला है, इंटरव्यू चालू है, सबसे पहले पहले कैंडिडेट को बुलाया गया, इंटरव्यू चालू है। कैंडिडेट नंबर वन, नमस्ते साहब, कहाँ से आए?
4: साहब इंडिया से आए हैं।
3: हाँ इंडिया से आए हो, इंडिया की स्पेलिंग जानते हो?
4: साहब आई पहले आता है, फिर एन आता है, फिर डी आता है, फिर आई आता है, फिर ए आता है, आई एन डी आई ए, मतलब इंडिया।
3: बड़े शाबाश, स्वर्ग में जाओ।
4: दूसरे को बुलाया,
3: हाँ साहब कहाँ से?
4: फ्रॉम जापान।
3: जापान की स्पेलिंग जानते हो?
4: साहब जे ए पी ए एन।
3: बड़े शाबाश, तुम भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया चित्रगुप्त साहब ने फौरन सवाल किया,
4: बोले भैया तुम चेकोस्लोवाकिया स्पेलिंग बताओ।
3: अब चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग नेताजी मिस्टेक कर गए, बोले नरक में जाओ। नेताजी फौरन चिल्लाया, गुरु राजनीति हो गई, सबसे सरल पूछे, हमसे बस कठिन पूछे, इंटरव्यू एक बार फिर से होना चाहिए, नहीं तो हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा देंगे। एक बार फिर से इंटरव्यू दोबारा करवाया गया, एक बार फिर से इंडिया वाले को बुलाया गया और पूछा गया, हाँ बोले साहब एक बात बताइए, ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था?
4: भले साहब दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप सन 19

0: 1903 में आया था। बोले शाहबाश, आप स्वर्ग में जाइए। दूसरे को बुलाया जापान वाले को, बोले साहब आप बताइए दक्षिण अफ्रीका के भूकंप में कितने लोग लगभग मारे गए थे। बोले साहब लगभग 19,998 लोग मारे गए थे। बोले शाहबाश आप भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया तो फौरन से सवाल किया गया, बोले साहब दक्षिण अफ्रीका के इस भूकंप में और ज्वालामुखी के फटने में जितने लोग मारे गए थे सबका नाम बताओ। नेताजी वहाँ भी मिस्टेक कर गए, बोले साहब नरक में जाओ। नेताजी फिर चिल्लाए कि गुरु राजनीति हो गई, साहब पॉलिटिक्स हो गई, सबसे सरल पूछा जाता है, हमसे ही कठिन सवाल किया जाता है। तो इसके लिए एक बार फिर से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग गए। लोगों ने ये तय किया कि साहब ठीक है इंटरव्यू फिर से होना चाहिए, लेकिन इस बार ऊपर से आदेश हो गया कि इस बार इंटरव्यू आखिरी होगा, बिल्कुल अंतिम होगा, फाइनल होगा और लिखित में होगा। राइटिंग में एग्जाम होगा, जो सही लिख के बताएगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो गलत लिखेगा वो नरक में जाएगा, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। नेताजी कहने लगे हाउ, इंडिया वाले को बुलाया, बोले साहब लिख के बताइए कौवा काँव काँव, कौवा काँव काँव। बोले शाबाश स्वर्ग में जाओ। जापान वाले को बुलाया, बोले साहब लिखिए बिल्ली म्याऊं म्याऊं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। बोले शाबाश बिल्कुल सही लिखा है, आप भी स्वर्ग में जाइए। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, नेताजी को देखते ही से फौरन सवाल किया, बोले साहब आप लिखिए घोड़ा।
1: हाँ तो दोस्तों, हंसने हंसाने का यह सिलसिला अभी आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की 13वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 12:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 अन्य रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री संत रविदास एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी अमृतसर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जोड़ेगी। भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। वर्तमान में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा है कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बलराम कृषि महोत्सव इस माह के दौरान इंदौर के अलावा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीश में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि 20 से 24 जुलाई तक विधानसभा सत्र चलेगा। सत्र के दौरान

0: 14 विधेयक लाए जाएंगे। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार आज अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, रीवा, मऊगंज, सतना समेत 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। एक बच्चों का है, लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

कार्यक्रम महिला सभा सुन रही सभी सखियों को सुनीता पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हमारे देश का युवा हमारे देश का भविष्य है। नई सोच, नवाचार, नई ऊर्जा के साथ युवा शक्ति देश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, और इसलिए युवाओं को नवाचार की ओर प्रेरित करने के लिए उन्हें सुरक्षित माहौल, सही मार्गदर्शन और समस्याओं को नए नजरिए से देखने की स्वतंत्रता देना बेहद जरूरी है। उन्हें लीक से हटकर सोचने और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। घर परिवार में युवाओं को हर बात पर क्यों और कैसे ये पूछने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। उनकी जिज्ञासा ही नए विचारों और आविष्कारों की नींव बनाती है। हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि असफलता नवाचार की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। हर गलती एक नया अनुभव और सीखने का अवसर प्रदान करती है। बच्चों को रटने के बजाय उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं पर काम करने का मौका दें। सखियों, एक ऐसा माहौल बनाएं जहां उनके सभी विचारों का सम्मान हो, भले ही वे कितने भी अलग क्यों न हों। विचारों के मुक्त आदान प्रदान से ही नवाचार को बढ़ावा मिलता है। सखियों, युवाओं को अपने क्षेत्र के सफल उद्यमियों, वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तकों से जुड़ने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। उनके अनुभव युवाओं को सही दिशा दिखाने में मदद करते हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पहलों जैसे स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन के बारे में भी जानकारी दें, जो उन्हें अपने विचारों को एक व्यवहारिक व्यवसाय में बदलने के लिए वित्तीय सहायता और मंच प्रदान करती हैं। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने देश के युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के बड़े देशों में, बड़े संस्थानों में भारत के युवा अब नेतृत्व कर रहे हैं। शिक्षा, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने समर्पित प्रयासों से नए आयाम स्थापित कर सोच को साकार करने में युवा शक्ति हमारी जो है ना, वो साधुवाद की पात्र है। निरंतर प्रगति के अवसर प्राप्त कर सोपान चढ़ती युवा पीढ़ी हमें आश्वस्त कर रही है कि सुखद बदलाव की ताजगी निरंतर बनी रहेगी।

0: और सखियों, गीत भी आपने सुन लिया है और अपने मन की बात कहने के लिए एक विधा और भी हमें बहुत अच्छी लगती है, वो है कहानी। जी हाँ, हम आपके मन की बात को जानते हैं, इसीलिए आज एक कहानी लेकर आए हैं। कहानीकार हैं डॉक्टर चारुचित्रा। कहानी है बोनसाई की बगावत। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर चारुचित्रा से उनकी ये कहानी।
1: शालिनी ने बड़े आदमकद शीशे में अपने आप को देखा। उसे लगा कोई और ही उसके सामने खड़ा है। आजकल अपने आप को पहचानने में भी उसे मेहनत करनी पड़ती है। उसका गेहूं रंग सफेद हो चुका था, ऐसे ही जैसे दीवारों का पुराना पेंट कई परतों के बाद आखिरकार नए रंग में रंग ही जाता है। राज ने 2 दिन पहले आके पार्लर में सब तय कर दिया था। कैटलॉग में वो उंगली रखते गए थे और राज की पसंद के हिसाब से शालिनी संवार दी गई। शालिनी को अपने घर में रखी नृत्य मुद्रा में एक हथेली ऊपर कंधे के पास और दूसरी कूल्हे के पास रखे वो गुड़िया याद आ गई, जिसे कोई भी आता जाता छू देता और वो कमर और गर्दन को हिलाकर नाचना शुरू कर देता। दरवाजे से बाहर कदम निकालते ही हल्की चिनमिन सी बारिश की फुहार को चेहरा उठाकर उसने छूने की कोशिश की ही थी कि तभी ड्राइवर ने छाते को उसके सिर पर तानकर फुहार की नाजायज गुस्ताखी पर वहीं रोक लगा दी। उसे छूने का हक सिर्फ और सिर्फ राज को था। यहाँ तक कि पापा, मम्मी, भाई और छुटकी भी शादी के बाद उसे जोर से गले लगाने से हिचकिचाने लगे। एक शादी में शालिनी को देखने के बाद जब राज ने घर आकर उसका हाथ मांगा तो जैसे सब कृतार्थ हो उठे थे। सभी हैरान थे कि राज ने इस घर परिवार और शालिनी में ऐसा क्या देख लिया जो उसका दीवाना हो गया। राज ने शादी की पहली रात ही अपने पिछले कड़वे अनुभवों का जिक्र करते हुए

ये स्पष्ट कर दिया था कि अब उसे एक साधारण परिवार की घरेलू ठीक ठाक सी लड़की चाहिए जो उसके कद और ओहदे को समझ सके और उसके सर पर नाच ना सके। शालिनी की छोटी सी झोली जिसमें बड़े बड़े सपने लेकर वह आई थी एकदम ही खाली हो गई। राज उसके परिवार की उम्मीद पर पूरी तरह खरा उतरा। आर्थिक कठिनाई झेलने वाले भाई को उसने अपने साथ बिजनेस में जोड़ लिया। शालिनी को बिना किसी व्यवधान के कॉलेज जाए बिना ही MA की डिग्री मिल गई। पापा की लंबी बीमारी का अच्छा इलाज भी होने लग गया। एक ही काम रह गया था, छुटकी के लिए अच्छा परिवार और वर ढूंढने का। राज ने वो खोज भी शुरू कर दी थी। राज ठंडी बयार की तरह परिवार के हर सदस्य को सुकून दे रहा था, लेकिन ऐसा क्या था कि अजीब सूखापन शालिनी के आसपास घिर गया था, जैसे सब कुछ खिंचा भिचा सा हो। तरलता को तरस गई थी वह। कहा था शालिनी ने एक दिन पापा मम्मी से, मेरा मन नहीं लगता यहाँ, मुझे अपने घर वापस आना है। मम्मी ने घबराते हुए उसके हाथ को दबाया कि कहीं आवाज गलती से भी किसी तक पहुँच ना जाए। क्या कह रही है, क्या परेशानी हो सकती है तुझे यहाँ? इतना बड़ा बंगला, कारें, गहने, कपड़े, नौकर चाकर, कितना ध्यान रखता है राज तेरा। अफरात में जब मिल जाए तो भी दिमाग खराब ही हो जाता है, माँ दांत भीजते हुए बोली। मैं कारपेट नहीं हूँ जो बिछती रहूँ मैं इंसान, वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि पापा भी मम्मी का साथ देते हुए बोले, बेटा जी मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है। राज तुम्हें मारता पीटता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, कोई और है उसकी जिंदगी में, बोलो। शालिनी एक टक देखती रही पापा को, कहती भी तो क्या कह। बेटा जीवन एडजस्टमेंट का नाम है, शादी को समय ही कितना हुआ है अभी, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। तुम इतने साधारण परिवार से आई हो, वह भी तो तुम्हारे साथ एडजस्ट करता होगा। मानता हूँ थोड़ा डोमिनेटिंग है राज, लेकिन इतनी कम उम्र में क्या क्या नहीं कर लिया उसने। पापा थोड़े फिर रुके, कहा तू ना कहती थी कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, संभाल लूंगी सबको। अब इस परिवार का भविष्य तेरे साथ ही जुड़ा है बेटा। घर के सामने कार रुकने के साथ ही शालिनी के भागते मन पर भी रोक लग गई। खिली धूप में लॉन की चमकती मुलायम मैक्सिकन कारपेट, घास, आसपास करीने से क्यारियों में लगे देश विदेश से आए पौधे, सफेद मेजपोशों से सजी गोल मेजें, लाल रंग के रिबन बांधे अतिथियों के स्वागत को आतुर कुर्सियां, शहर के मशहूर गायक की कव्वाली पर झूमते ढाके लगाते रसूखदार पुरुष और महिलाएं। राज वेलकम वेलकम करता हुआ फोटोग्राफर के साथ तेजी से आगे बढ़ा। पोर्च में एक तरफ खड़े मम्मी पापा और भाई भी उत्साह से उसकी आगवानी को आगे आए तो राज की एक दृष्टि से उनके बड़े कदम सहम गए। अब क्या चीज कैसे प्रस्तुत करनी है ये राज को हमेशा पता होता है। यंग एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार यूं ही तो नहीं मिल गया था उसे। सबके सामने उसके हाथों को पकड़ता हुआ वह कह उठा, बेबी बहुत खूबसूरत लग रही। फिर धीरे से उसके कानों के पास आकर बेहद कड़े स्वर में वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, ये पल्ला क्यों लपेट रखा है, साड़ी का लुक ही नहीं आ रहा ढंग से। उधर से किसी की आवाज आई, नॉटी बॉय, ये क्या कानाफूसी चल रही है राज। इतने में मंत्री जी की कार के रुकते ही राज के साथ शालिनी भी उनके पैर छूने को झुकी तो मंत्री जी ने इत्मीनान से उसकी अनावृत पीठ पर ऊपर से नीचे तक हाथ फिराकर कुछ ज्यादा ही लंबा आशीर्वाद दे डाला। राज ने देखकर भी अनदेखा कर दिया और वो एक गिजगिजे जानवर को पूरी दोपहर पीठ पर लिए घूमती रही। राज और शालिनी की शादी की दूसरी एनिवर्सरी का केक कटा और राज ने ग्लास पर चम्मच बजाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बेहद रोमांटिक अंदाज में शालिनी की ओर देखकर बोला, अपनी मल्लिका की नाजुक गर्दन के लिए एक छोटा सा तोहफा इस गुलाम की ओर से। उसके साथ ही शालिनी की गर्दन हीरो जड़े हार से सज गई। जोर से तालियां बजी और टू क्यूट, व्हाट अ लकी गर्ल, प्रेशियस, सो स्वीट, ट्रूली ब्लेस्ड जैसी आवाजें हवा में उछलने लगी। लेकिन इस सुख को शालिनी जी ही नहीं पा रही थी। यादों के बवंडर में उलझी हुई थी वो। 2 सालों में पहली बार उसने राज से कोई तोहफा मांगा था। बड़े ही रोमांटिक अंदाज में, क्या चाहिए तुम्हें, कहते हुए राज ने उसे सीने से लगा लिया। राज मैं कोचिंग करना चाहती हूँ, UPSC का इम्तिहान देना चाहती हूँ। राज ने सीने से लगी शालिनी को थोड़ा पीछे करते हुए बोला, क्या रखा है इस सब में, पढ़ पढ़ कर अपना दिमाग खराब करोगी। तुम हैसियत नहीं देखती अपने पति की, छोटी सी बात पर मंत्री आकर खड़े हो जाते हैं घर में। फिर उसके उतरे चेहरे को देख राज ने खुद ही रास्ता निकाल लिया। अच्छा तुम्हारा घर से बाहर निकलने का मन है ना, तो तुम समाज सेवा वगैरह कुछ कर लो, बल्कि अपना ही एक NGO बना लेते हैं। राज बचपन से इसी सपने को सींचा है मैंने और मुझे लगता है मैं कर अभी आगे कुछ कह पाती, उससे पहले ही राज का ठंडा स्वर सुनाई दिया, नहीं यह तो नहीं हो पाएगा, घर में बहुत कुछ है करने को तुम्हारे पास। सख्त चेहरे के साथ बिना जवाब का इंतजार किए राज बाहर निकल लिया और शालिनी अपना वजूद बिस्तर के नीचे, कालीन की गर्द में, बर्तनों के सिंक में, अलमारियों और गुलदानों में ढूंढती फिरी। शालिनी की तंद्रा एक परिचित आवाज से टूटी। मशीनी ढंग से दी जाने वाली बधाइयों के बीच ये मंगल कामना कुछ अपनी सी लगी। अरे शेखर जी आप कैसे हैं? आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, वो भी फोन पर, कृतज्ञ हूँ मैं। आप नहीं जानते कितनी बड़ी प्रशंसक हूँ मैं आपकी। जाने कितने दिनों बाद वो अपने अंदर से फिर अपनी पुरानी शालिनी को खोज लाई थी। अपनी ही रॉ में खिलकती शालिनी शेखर को राज से मिलवाने को आगे बढ़ी। राज ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, शेखर, इन्हें सुनने तो कॉलेज भी बंक करके मैं पहुंच जाती थी। ये सारे शब्द शालिनी के मन के अंदर ही रह गए। तब तक एक्सक्यूज मी कहता हुआ राज आगे बढ़ा और मुड़कर शालिनी को इशारे से बुलाया। राज की शिष्टता और मुस्कुराहट बरकरार थी, मगर क्रूर हुए थे तो वे थे उसके शब्द। उसने आहिस्ता से शालिनी को कहा, इसको किसने बुलाया है? शालिनी ने अधिकार से कहा, मैंने। मुस्कुराहट और शिष्टता पर तमतमाहट का आवरण पल भर को चढ़ा और फिर उसी रूप में वापस आकर राज बोला, रफा दफा करो उसे।
से, कहीं से फिट हो रहा

0: बुलाया है इस पार्टी में? रुआ सी हो उठी शालिनी, लेकिन ऐसे कैसे? जैसे बुलाया है वैसे ही वापस भेजो और चेहरे की मुर्दानगी खत्म करो। कहते हुए राज की तमतमाहट पर शिष्टता का मुलम्मा फिर चढ़ चुका था। शालिनी ने रंगीन कागज में लिपटी किताब को मेज पर देखा और आंसुओं से धुंधली आंखों ने शेखर की अनुपस्थिति को भी महसूस कर लिया। शालिनी अपने अंतर्द्वंद से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी राज की आवाज सुनाई दी। क्या कर रही हो? आओ जान, तुम्हारे बिना अधूरा हूं मैं। पलों में भाव भंगिमा मूड बदल लेने की राज की है कला आज 2 बरस बाद भी शालिनी को अचंभित कर उठती है। राज लॉन में अपने पसंदीदा हिस्से में कढ़ा था, जहां जब तब दस्ताने चढ़ा कैंची कटर तांबे की तारें लेकर कई तरह के खेल और प्रयोग वह पौधों पर किया करता है और छोटे पेड़ों की एक दुनिया उसने वहां बसा ली है। छोटे छोटे बरगद, पाइन, जापानी लाल मेपल, जूनिपर, चीनी एल्म, फिकस, एडीनियम, यही नहीं संतरे, नारंगी, अमरूद से लदे फदे मिनिएचर्स जाने कितने ही विराट पेड़ों के घमंड को तोड़ते थे। लोग मंत्रमुग्ध थे राज की इस कला पर और राज किसी विशेषज्ञ की तरह बड़े ही मनोयोग से सबको बोनजाई बनाने की बारीकियां समझा रहा था कि तभी सिन्हा साहब की आवाज ने व्यवधान डाल दिया। तांबे की तारों से लिपटे एक बोनजाई को सबको दिखाते हुए बोले, क्यों राज, तुम्हें नहीं लगता कि ये प्रकृति के खिलाफ है? किसी की भी नेचुरल ग्रोथ को ऐसे क्यों रोकना है? टॉर्चर कर रहे हो तुम इनके साथ। इन्हें तारों से बांधना, काटना, फैलने से रोकना, बरगद पीपल जैसे विशाल पेड़ों को जरा सी ट्रे भर जगह देते हो। उन्हें प्राकृतिक रूप से बढ़ने दो भाई। राज को विरोध पसंद नहीं है, अपने को जज्ब करता हुआ बोला, अरे साहब क्या कहते हैं, इटली के बोनजाई म्यूजियम में 1000 साल पुराना पेड़ रखा है, टोक्यो के इंपीरियल पैलेस में 17वीं शताब्दी का बोनजाई देख तो मैं दीवाना हो गया। जब इतनी लंबी उम्र तक जीते हैं, बाकायदा उसी तरह फल फूल देते हैं जैसे दूसरे पेड़ देते हैं, खूबसूरती तो देखिए इनकी, तो कैसे आप दावा करते हैं कि इनके साथ टॉर्चर हो रहा है? बस तकनीक का कमाल है, ग्राफ्टिंग और प्र्यूनिंग सही होनी चाहिए। हाँ, तारों से बांधने में कुछ छुटपुट निशान पड़ जाते हैं, एस्थेटिकली जरा अच्छे नहीं लगते, तो उनके भी तरीके हैं ठीक करने के। सौंदर्य सिर्फ खजुराहो अजंता एलोरा की मूर्तियों और पेंटिंग्स में नहीं है जनाब, इस कटाई छटाई और उससे उपजे बौनेपन में भी एक परिष्कृत सौंदर्य शास्त्र है। बहुत देर से चुप खड़ी शालिनी एकदम चुनौती दे बैठी, इतनी मेहनत के बाद भी अगर कोई बोनजाई अपने कद से आगे बढ़ गया तो? उसने बगावत कर दी तो? आकार और कद ना बढ़ने देने का ही तो सारा मसला है जाने मन, इतनी कांट छांट के बाद या तो बोना रह जाएगा या मर जाएगा। कहते कहते राज मुस्कुराकर फोटोग्राफर को पोज देने को तैयार हो गया।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी ये कहानी बोनजाई की बगावत, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कहानीकार थी डॉक्टर चारू चित्रा। सखियों, देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमने अपने अधिकारों और कर्तव्यों की केवल जानकारी ही नहीं होनी चाहिए बल्कि इनके प्रति जागरूकता और पालन भी जरूरी है। जब तक एक भी महिला अपने हक से अनजान है तब तक हमारा समाज आधा अधूरा है। सखियों, हम आपको कभी भी लौट जाओ नहीं कहेंगे, हम तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित करेंगे और आगे बढ़ने का पहला कदम है अपना हक जानना, क्योंकि जो अधिकार हमें पता ही नहीं उसे पाने के लिए हम संघर्ष कैसे करेंगे भला। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा के खिलाफ 1091 पर फोन करना, महिला थाने जाना और ये सब महिलाओं का अधिकार है। सन 2005 के बाद पिता की संपत्ति में बेटी बेटे का समान अधिकार है। परिवार में पति से संबंध बिगड़ने पर गुजारा भत्ता मांगने का भी अधिकार है। ऑफिस में यदि कोई गलत कमेंट, घूरने और छूने की कोशिश करता है तो ये अपराध है। हर ऑफिस में आंतरिक समिति का गठन जरूरी है जो शिकायत मिलने पर 90 दिन में जांच पूरी कर दोषी को सजा देने के लिए प्रस्तावित करती है। यह अधिकार कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत हम महिलाओं को मिला है। सखियों, प्राइवेट और शासकीय नौकरी में मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत 26 हफ्ते की सवैतनिक छुट्टी पाना अब हर माँ का अधिकार है। सूचना का अधिकार भी हमें विकास कार्यों, बजट, देरी को जानने का अधिकार देता है। हम 10 रुपये की फीस जमा करके जानकारी मांगने का हक रखते हैं। ये भी याद रखें कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने महिला पुरुष बराबर हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि सिर्फ औरत होने की

वजह से हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज में महिलाओं की प्रगति से ही नापता हूँ। तो बहनों, कुछ भी गलत हो तो आवाज़ उठाओ। हमारी चुप्पी अपराध को बढ़ावा देती है। अपने आसपास की महिलाओं को भी जागरूक करना ज़रूरी है। एक जलता दिया 100 दिए जला सकता है। जब एक महिला अपने अधिकार जान जाती है तो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को एक नई दिशा देती है। और जब सखियों बात आती है दिशा देने की, तो हम सब अब नए समाज में, अब इस नए बदलाव में कार्यस्थल पर भी जाते हैं और जहाँ पर भी काम कर रहे हों, अक्सर हमें काम करना पड़ता है कुर्सी टेबल पर। नतीजा कमर दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों में सूजन और एसिडिटी से अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। इसलिए चेयर योगा को अपनाकर कार्यस्थल पर ही 10 मिनट में रिचार्ज हुआ जा सकता है। इसलिए चेयर योगा को अपनाकर कार्यस्थल पर ही 10 मिनट में रिचार्ज हुआ जा सकता है और इन तकलीफों को दूर किया जा सकता है। हाँ, सावधानी ये रखनी है कि कुर्सी बिना पहिए वाली और मजबूत हो, घुटने 90 डिग्री पर हों, रीढ़ सीधी होनी चाहिए और कोई भी आसन अगर दर्द करे तो उसे रोक देना चाहिए। आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल करने से गर्दन और कंधों में जकड़न और दर्द दूर करने के लिए सांस भरते हुए गर्दन दाएं कंधे की तरफ ले जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए बीच में लाएं और फिर बाएं तरफ ऊपर नीचे भी करें। ऐसा 5 बार करें, क्योंकि हर कोई आजकल इन तकलीफ़ों से दो चार हो रहा है। और अगर हम सावधानी बरतें और थोड़ी सतर्कता बरतें और बीच बीच में इस तरह की कोशिश करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो हमारी ये जकड़न बहुत हद तक दूर हो सकती है। इससे सर्वाइकल और मोबाइल नेक में आराम मिलता है। कंधों में जमा टेंशन रिलीज करने के लिए लंबी सांस लेकर दोनों कंधों को कान तक उचकाना चाहिए और सांस छोड़ते हुए झटके से नीचे गिराने की क्रिया 5 से 7 बार दोहराना चाहिए। सखियों, कुर्सी पर बैठकर कटी चक्रासन भी किया जा सकता है। इसे करने के लिए पैर थोड़ा खोल कर बैठो, हाथों को कंधे की सीध में फैलाओ, सांस छोड़ते हुए कमर से दाएं घूमो, दायां हाथ कुर्सी के पीछे, बायां हाथ दाएं घुटने पर। इसी अवस्था में 15 सेकंड तक रुकने के बाद सांस लेते हुए सामने आए और फिर बाएं तरफ दोहराएं। ये आसन लचीलेपन, पाचन और कमर को सही रखता है। कार्पल टनल, माउस वाली जकड़न से बचने के लिए मुट्ठी बांधकर दोनों कलाइयां 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। पैरों में सूजन, सुन्न होने को रोकने के लिए एड़ियां जमीन पर रखकर पंजों को 15 बार ऊपर नीचे करो, फिर पंजे हिलाकर एड़ियां उठाएं। सुस्ती भगाने के लिए और जकड़न कम करने के लिए सीधे बैठकर सांस भरते हुए दायां घुटना छाती की तरफ उठाओ, हाथ से घुटने को पकड़कर 10 सेकंड खिंचाव देना चाहिए, फिर बाएं पैर से इसी तरह दोहराना चाहिए। एंग्जाइटी को कम और दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए 2 मिनट तक अनुलोम विलोम को भी अपनाना चाहिए। इस प्रक्रिया को 5 मिनट रूटीन में रखना चाहिए। ये प्रोडक्टिविटी को 15% तक बढ़ाता है और हम ऊर्जा से भरे हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। हमारी कुर्सी की हमारी योगा मैट बन जाती है। हमारी फुर्ती और इच्छा शक्ति को जागृत रखने के लिए समय ना मिलने का बहाना अब नहीं चलेगा। योग अपनाइए, कार्यस्थल पर अपनाइए और खुद को स्वस्थ रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी सभी सखियां हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे फूलचंद अहिरवार और साथियों के गाए लोक भजन।

सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे मेघा बुधेलिया के गाए गीत।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म बीवी हो तो ऐसी सी, अनुराधा पौडवाल की आवाज़, साथ में मोहम्मद अजीज़, समीर का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

पंकज दास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं दयावान फिल्म का ये नगमा, अजीज़ कैसी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल के गाए इस नगमे के साथ ही आज का फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब दौरे पर जाएंगे। वे सबसे पहले चंडीगढ़ स्थित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे, जहां विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 अन्य रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। श्री मोदी संत रविदास एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो अमृतसर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जोड़ेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस ले लिया गया है। ये विभाग अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने पास रखेंगे। इसके बाद लखन पटेल अब केवल आनंद विभाग के मंत्री रह गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। लखन पटेल पथरिया विधानसभा से विधायक हैं। साल 2023 में सरकार के गठन के साथ लखन पटेल को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पशुपालन और डेयरी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर से अबूधाबी के लिए प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये उड़ान टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित की जाएगी और सप्ताह में चार दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। अभी तक इंदौर से अबूधाबी जाने के लिए यात्रियों को दिल्ली या मुंबई होकर जाना पड़ता था, जिसमें 7 से 8 घंटे लगते थे। नई उड़ान से यह सफर सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे। ये महोत्सव लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में ये महोत्सव आयोजित हो रहा है। महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इंदौर के बाद ये महोत्सव धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 14 से 17 जुलाई भारत टेक 2026 चल रहा है। इसमें प्रदेश के पवेलियन में पीएम मित्रा पार्क, टेक्सटाइल इकोसिस्टम और निवेश अनुकूल नीतियों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने देश प्रदेश के संभावित निवेशकों से विस्तृत चर्चा कर उन्हें प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं से अवगत कराया। प्रदेश ने अन्य 6 पीएम मित्र राज्यों के साथ एक राउंड टेबल सत्र में भी भागीदारी की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज रात अशोकनगर पहुंचेंगे। कल से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। कल वे तार वाले बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद जन सुनवाई करेंगे और स्वसहायता समूह की महिलाओं से संवाद भी करेंगे। शाम को सिमरखेड़ी में विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। वहीं 17 जुलाई को कलेक्ट्रेट में DVMC की बैठक के बाद श्री सिंधिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी दिन अशोकनगर रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार का उद्घाटन और विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से गर्मी ने फिर से जोर पकड़ लिया है। राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पिछले 6 दिनों से प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश दर्ज नहीं की गई है। अगले 5 दिनों तक भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। अब तक प्रदेश में 9.5 इंच बारिश हुई है, जबकि इस अवधि तक सामान्य वर्षा 10.5 इंच मानी जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज इंदौर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बालाघाट सहित 21 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पीआईबी भोपाल द्वारा देश के समग्र विकास और साल 2047 तक भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संकल्प को लेकर कल रीवा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगर मालवा जिले में कल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल संचालकों, दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के बारे में जानकारी दी गई। झाबुआ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के अंतर्गत जिले में 19 जुलाई को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी की पुलिस अधीक्षक यांगचिन डोलकर भूटिया ने कल खुद बैराड़ थाने पर आयोजित ग्राम चौपाल में लोगों से जनसंवाद किया। दमोह लोकसभा क्षेत्र के सांसद राहुल सिंह लोधी ने छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा स्थित केंद्रीय विद्यालय का बीते रोज निरीक्षण किया। नर्मदापुरम में कृषक कल्याण वर्ष के तहत जिला प्रशासन किसानों की कृषि लागत कम करने, आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रुपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।

0: हमने टारगेट रखा है वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है, उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
2: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
2: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
1: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
3: The Security Council has been ineffective.
4: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
3: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी और

0: हमारे संवाददाता से।
1: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 183,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबूधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को ये भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला गीत हमने लिया है अमृत फिल्म से। मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं। आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, बेबी सौती माखीजा, माही, पूजा छुटकी, शरद डोडवानी और पूरे माखीजा परिवार ने। तो आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला नगमा।

0: गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक, मीका विरक, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, आप सबने फरमाइश की है ईश्वर फिल्म के इस गीत की, जिसे आवाज़ें दी हैं नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति ने। अनजान का गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।
1: तार सब तक, मंदिर सब तक।

0: जी, तुम्हारे आने से तो सब कुछ सुरीला हो गया।
1: तुम मेरे आने से पहले भी सही गा रहे थे रागधानी सा नी सा गा सा गा सा नी पा पनी पनी सा नी सा नी सा गा सा गा सा गा मा गा मा गा मा पा मा पा मा पनी पनी पनी सा सा नी सा नी पनी पा मा गा मा गा सा गा सा नी पनी पनी सा।

गंगा जमुना सरस्वती। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत इस फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़, इंदिवर का गीत और अनु मलिक का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और समरीत पंचोलिया, कवर कॉलोनी बड़भा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली।

प्रेम प्रतिज्ञा, लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा। बप्पी लहरी और आशा भोंसले की आवाज़ें हैं, गीत इंदिवर का और संगीत बप्पी लहरी का। इस गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा।

दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, जयराजपुर राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट ने।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब दौरे पर जाएंगे। वे सबसे पहले चंडीगढ़ स्थित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे, जहां विभिन्न बुनियादी ढांचा सुविधा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व युवा कौशल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि युवाओं की प्रतिभा, कौशल, नवाचार और उद्यमिता ही विकसित भारत और समृद्ध मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। राज्य मंत्री लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस ले लिया गया है। ये विभाग अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने पास रखेंगे। इसके बाद लखन पटेल अब केवल आनंद विभाग के मंत्री रह गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर से अबूधाबी के लिए प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये उड़ान टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित की जाएगी और सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। प्रदेश में आज 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा शुरू किए गए इस विशेष जन जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाना और प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। और मौसम विभाग के मुताबिक आज इंदौर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बालाघाट सहित 21 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे मशरूम उत्पादन तकनीक कम लागत अधिक मुनाफा, इस विषय पर भेंटवार्ता, बुंदेली समाचार और साथ ही लोक रंग सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8 बजे। रात 8:15 बजे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर केंद्रित एक कार्यक्रम पूर्वापलोकन कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:15 बजे आकाशवाणी दिल्ली से, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम 9:30 बजे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 10:00 बजे सुनिएगा नाटक अलिफ लैला की कहानी, लेखक डॉक्टर हामिद हुसैन, प्रस्तुतकर्ता शाकिर अली। 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा माधुरी ओक का गायन, राग होगा काफी कानड़ा। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेब 188.32 मीटर, साथ ही GTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। 5:00 बजे से मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। लोक संगीत में आप सुनेंगे फूलचंद अहिरवार और साथियों के गाए लोक भजन, और सुगम संगीत में मेघा बुधुलिया के गाए गीत।

फूलचंद अहिरवार और साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे मेघा बधोलिया के गाए गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

मेघा बदोलिया के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। पहला गीत वारिस फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं। वर्मा मलिक का गीत और उत्तम जगदीश का संगीत।

अभिजीत और साथियों की आवाज़ों में अब सुनिए बागी फिल्म का ये नगमा। समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

और लीजिए अब सुनिए आशिकी फिल्म का ये गीत, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं, समीर का गीत और नदीम शबण का संगीत।

पति पत्नी और तवायफ कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए। इस फिल्म से आवाज़ सलमा आगे, सलमा का और मोहम्मद अजीज़ की, अनंत बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इसके साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। 3:58 हुए। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में सर्वश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। आज विश्व युवा कौशल दिवस है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि आज का युग ज्ञान, तकनीक और कौशल का है। विकसित भारत के निर्माण का संकल्प तभी साकार होगा जब हमारे युवा हुनरमंद, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र सुदृढ़ीकरण अवलोकन और संवाद कार्यक्रम में सहभागिता कर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को हित लाभ और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये जन केंद्रित समझौता है जिससे सभी को लाभ पहुंचेगा। प्रदेश में आज 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से है दूरी जरूरी 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए इस विशेष जन जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाना और प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। और भोपाल के मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में जनजातीय चित्रकार की प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसमें भील जनजातीय चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी 30 जुलाई तक रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए उर्दू प्रोग्राम कहकशां।

को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या की मिट्टी से उभरने वाला वो सितारा जिसे दुनिया सैयद मोहम्मद बशीर और बाद आजा डॉक्टर बशीर बद्र के नाम से जानती है, अपनी जात में एक पूरी कायनात समेटे हुए था। उनके बुजुर्गों का ताल्लुक सरजमीने ईरान से था, जो हिजरत करके पहले लाहौर और दिल्ली, फिर फैजाबाद और बिलाखिर कानपुर में मुकीम हुए। बशीर बद्र की परवरिश उस गंगा जमनी तहजीब के साए में हुई, जहां लहजों में रस और लफ्जों में मिठास होती है। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेर मौजू किया, जिस पर वालिद ने बरहमी का इजहार भी किया, लेकिन वही शेर उनकी अजमत का नुक्ता आगाज साबित हुआ। उनका ये शेर, हवा चल रही है उड़ा जा रहा हूँ, तेरे इश्क में मैं मरा जा रहा हूँ। दोस्तों, कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। अभी वो 10वीं जमात के तालिबे इल्म ही थे कि वालिद शाह मोहम्मद नज़ीर, जो महकमाए पुलिस में मुलाजिम थे, दाई अजल को लबेक कह गए। इस कम उम्री में घर की तमाम जिम्मेदारियां उनके नातवा कंधों पर आ पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें तालीम अधूरी छोड़कर महज 85 रुपए माहवार पर पुलिस की मुलाजिमत करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, जिसके खमीर में शायरी रची बसी हो, उसे हालात की संगीनी कब तक कैद कर सकती थी। हालात के नामुस्तादत के बावजूद बशीर बद्र ने इल्म की शम्मा को गुल नहीं होने दिया। पुलिस की मुलाजिमत के साथ साथ उन्होंने अपनी इल्मी प्यास बुझाई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए, एमए और फिर प्रोफेसर आले अहमद सुरूर की निगरानी में आज़ादी के बाद उर्दू गजल की तनखीदी मुताला के मौजू पर पीएचडी की डिग्री हासिल की। ये उनका जुनून ही था जो 1967 में उन्होंने मुस्तकिल रोजगार यानी पुलिस की मुलाजिमत को खैराबाद कह दिया, ताकि वो खुद को मुकम्मल तौर पर अदब के लिए वक्फ कर सकें। सामईन, इस प्रोग्राम की पहली पेशकश रेखा विशाल भारद्वाज की आवाज में और कलाम है बशीर बद्र साहब का। समाप्त कीजिए।

दोस्तों अभी आप रेखा विशाल भारद्वाज की आवाज में गजल समाप्त फरमा रहे थे और कलाम था बशीर बद्र साहब का। बशीर बद्र उर्दू अदब के वो मुनफरिद मुअम्मार हैं जिन्होंने गजल को रिवायती गुल बुलबुल और जुल्फ और रुखसार के हिसार से निकालकर एक नई जिंदगी बख्शी। उन्होंने गजल में ऐसे लफ्जों को दाखिल किया जिन्हें पहले गैर शायराना समझा जाता था।

जैसे पुलोवर, रिबन, रेल और ग्लास। डॉक्टर गोपी चंद नारंग ने उनके फन को सराहते हुए ठीक ही कहा था। बशीर बद्र ने पोएट्री में नई बस्तियां आबाद की हैं। उनकी तख्लीकात जैसे इकाई, इमेज, आमद, आस, आसमान, आहट, गजल के जदीद सफर के वो संगे मील हैं जिन्होंने उर्दू गजल और उर्दू दाद तबके को भी अपना गुरवेदा बना लिया। उनकी इसी अदबी खदमात के एतराफ में अदबी और सकाफती इदारों ने उन्हें मुतादित एजाजात और अवार्ड से नवाजा। उनमें से उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और बिहार उर्दू एकेडमी के एजाजात के अलावा हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री जैसे आला अवार्ड से नवाजा और 1999 में उनके शेरी मजमुए आस पर उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड भी दिया गया। उनका विजन इतना दूरस्थ था कि उन्होंने 1984 में ही अपनी किताब आमद में 2035 के कारीन के नाम एक खत लिखा जिसमें ये दावा किया कि उनका उसलूब आने वाले अहद की गजल की बुनियाद बनेगा। उनके बदले हुए लहजे की एक झलक उनके अशार में मुलाहिजा कीजिए। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, ना कहा हुआ ना सुना हुआ। बशीर बद्र ने इंसानी रिश्तों की नफसियात को जिस तरह समझा वो उनके अशार से जाहिर है जो आज ज़बाने ज़्यादे आम है। जैसे कि ये शेर, ये ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है जो कोई दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे, और जिंदगी की जद्दोजहद को इस तरह बयान करते हैं। इस शेर में देखिए, रेल की पटरी पर मेरी शोहरत रख दी, बस के पहियों से रोजी रोटी बांधी। दोस्तों, हम बशीर बद्र के बारे में और मजीद मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है ये गजल मुश्ताक हुसैन की आवाज में, और कलाम है बशीर बद्र साहब का।

दोस्तों, अभी आप मुश्ताक हुसैन की आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे और कलाम था बशीर बद्र साहब का। बशीर बद्र साहब की ज़िंदगी सिर्फ मुशायरों की तालियों और वाहवा तक महदूद नहीं थी। उन्होंने हिजरत, फसादात और अपनों के बिछड़ने के गहरे जख्म भी सहे। मई 1984 में जब वो कराची में एक मुशायरे की कामयाबी समेट रहे थे, उसी वक्त मेरठ में उनकी पहली शरीक हयात कमर जहाँ का इंतकाल हो गया। सदमात का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 1987 के मेरठ फसादात में उनका घर, उनकी तमाम यादें और नायाब कुतुब का इल्मी सरमाया नजरे आतिश कर दिया गया। उस वक्त एक इंसान के टूटने का मंजर और उसकी सदा उनके इस शेर में सुनाई देती है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लेकिन बशीर बद्र का फन सिर्फ एहतजाज तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उन्होंने इंसानियत को मोहब्बत और सुलह का रास्ता दिखाया। उन्होंने सिखाया कि नफरत की आग में भी दोस्ती की गुंजाइश बाकी रहना चाहिए, क्योंकि इंसान ही इंसान का सहारा है। जैसा कि उनका ये शेर, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। वो तनकीद और मुखालिफत से घबराने वाले शायर नहीं थे, बल्कि उनका मानना था कि मुखालिफत इंसान के किरदार को जिला बख्शती है। उन्होंने अपनी शख्सियत को तजादात के बीच इस तरह संवारा कि उनका दुश्मन भी उनके वक़ार का कायल हो गया। जैसे कि इस शेर में ये बात जाहिर होती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मशहूर फिल्म साज विशाल भारद्वाज बशीर बद्र के बहुत बड़े रहे हैं। विशाल उन्हें अपने रूहानी उस्ताद मानते हैं और अक्सर उनके अशार से अपनी फिल्मों में तहरीक हासिल करते रहे। बशीर बद्र को उन्होंने वो इज्जत दी जो एक सच्चे फनकार का हक होती है। वो अक्सर कहते थे कि बशीर बद्र का कलाम सिर्फ शायरी नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का फन है। सामईन, इस प्रोग्राम की

दोस्तों, अभी आप बिहारी लाल राव की आवाज में गजल समाअत फरमा रहे थे और कलाम था बशीर बद्र साहब का। दोस्तों, सफर जिंदगी के आखिरी तवील अयाम डॉक्टर बशीर बद्र ने झीलों के शहर भोपाल में अपनी दूसरी

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है का 13वां भाग।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी, राजेश मिश्रा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं।
1: ग्रामीण अंचल में और चाहे शहर में स्कूली शिक्षा की ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और काफी अंतर हुआ है, फिर भी हम हास्य व्यंग कलाकार उसमें कुछ खोजने को और अपनी कुछ कल्पनाएं आप तक पेश करते हैं। जो नहीं भी दिखता है तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होता होगा या ऐसा होना चाहिए। तो लीजिए, एक स्कूल की ओर आपको ले चल रहे हैं कि स्कूल में गुरुजी ने विद्यार्थी से कहा, बेटा ये बताओ कि जब मैं घर से पैदल स्कूल जाता हूं तो मुझको 30 मिनट लगता है, आधा घंटा, और जब मैं किसी की

0: साइकिल में जाता हूं तो मुझको 20 मिनट लगते हैं। कितना लगता है? 20 मिनट। और जब मैं स्कूटर में जाता हूं किसी की बैठकर तो मुझको 10 मिनट लगते हैं। तो बेटा मेरी उम्र बताओ कि मेरी उम्र कितनी है?
1: एक छात्र खड़ा हुआ,
2: पंडित जी आपकी उम्र ना 50 साल।
0: देखो कितना होशियार बच्चा है। इतने बच्चों में कोई भी बच्चा ये नहीं बता पाया कि जब मैं पैदल आता हूँ स्कूल 1/2 घंटा, जब मैं साइकिल में आता हूँ 20 मिनट, स्कूटर में 10 मिनट, तो गुरुजी की उम्र 50 साल। ये कैसे बताओ? बताओ बच्चों, इनको बताओ कैसे निकाला तुम?
2: पंडित जी हमारे घर के बाजू में एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 25 साल है, वो आधा पागल है।
1: गले बैठ जाओ बेवकूफ, कभी जीवन में पास नहीं होगे। दूसरी एक और बड़ी समस्या सामने आई उस गांव में कि एक बच्चे को, बाकी बच्चों को तो बहुत प्यार से नहीं बोलते थे, मारपीट करते रहते थे, किंतु एक बच्चे को ज्यादा ही प्यार करते थे। बेटा कैसे हो?
2: अच्छा पंडित जी।
1: अपनी अम्मा से बोलना पंडित जी ने राम राम पहुंचाइए, नमस्ते। ठीक है। बच्चा हमेशा जाकर अपने घर में मैसेज दे देता था कि माँ, माँ साहब ने आपको नमस्ते बोला है, राम राम पहुंचाइए। अब चूंकि बच्चा पढ़ रहा था और उनको आशय ये समझ में नहीं आता था कि ये नमस्ते का क्या आशय है, ये क्रम चलता रहा। एक दिन उनने अपने पति को बताया कि लोग अगर सुनेंगे तो बड़ा खराब लगेगा, ये नमस्ते क्यों पहुंचाते हैं इनके गुरुजी। तो एक दिन उनने पति पत्नी ने प्लान बना लिया और आपस में, और जो ही बच्चे ने गुरुजी से बोला,
2: गुरुजी प्रणाम।
1: बेटा अपनी माताजी से नमस्ते बोल दिया था?
2: हाँ बोल दिया था, माताजी के नहीं थी कि पिताजी दूसरे शहर जा रहे हैं, आपको बुलाया है।
1: माँ साहब बढ़िया खुश घर पहुंचे। घर पहुंचे इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया, उनके शिष्य की माँ बोली,
2: लगता है कि वो ये आ गए हैं।
1: तो क्या करना है?
2: करना कुछ नहीं, आप हमारी साड़ी पहन लो, मैं बोल दूंगी कि पड़ोस के आए हैं, ये आटा पीसने, जो घर में पुरानी चक्की, इसमें आटा पीसना, गेहूं पीसना है, तो वो आए हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं।
1: मरता क्या ना करता, माँ साहब ने जल्दी जल्दी जल्दी धोती पहन के अपना बैठ गए गेहूं पीसने के लिए। और जो ही आए उनके पापा, बात की और इशारा किया, वो चले गए। जब वो चले गए तो माँ साहब ने जल्दी से धोती उतारी, अपना भागे। भागने के बाद एक दिन बच्चे ने बोला,
2: माँ साहब, माँ पूछ रही थी बहुत दिन से आपने नमस्ते नहीं पहुंचाई है।
1: तो माँ साहब बोले, क्यों, तुम्हारे घर का आटा फिर खत्म हो गया क्या? एक डॉक्टर साहब थे और जैसा उनकी पत्नी भी डॉक्टर, पति पत्नी दोनों। एक दिन पत्नी ने शिकायत की पति से और कहने लगी,
2: सुनिए।
1: क्या बात है?
2: है ना, आप हॉस्पिटल चले जाते हो ना, सामने हॉस्टल में लड़के रहते ना, दिन के 12 बजते मेरे को देखना चालू कर देते, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप इनको मना कर सकते हैं क्या?
1: बोले, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मना करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, मैं अब भी जाता हूँ। हॉस्टल पहुंचे, हॉस्टल में लड़के रहते, कहने, देखिए आप लोग यहाँ ढंग से रहिए, क्यों, क्या बात है, क्या बात है, दिन के 12 बजते आप लोग मेरी पत्नी को देखना चालू कर देते, ढंग है आप लोगों का, आप लोग नौजवान हैं, अच्छी बात नहीं। बोले, डॉक्टर साहब पहले अपने घर के सामने का बोर्ड अलग करिए, क्यों, क्या बात है, क्या बात है, देखिए क्या लिखा, क्या लिखा, डॉक्टर सुधा रानी, देखने का समय 12 से 2। छोटी छोटी बातें बड़ी मजेदार हो जाती हैं। मैं कभी घड़ी नहीं पहनता हूँ, मेरे से किसी ने पूछा कि राजेश मिश्रा आप घड़ी क्यों

नहीं पहनते। मैंने कहा मैं घड़ी इसलिए नहीं पहनता हूं कि हर आधे घंटे में हिंदुस्तान में लोग समय अपने आप बताते हैं। अब आप सोच रहे हो कैसे बताते हैं? आप कहीं विलंब से पहुंचे तो क्या यार भैया अभी आ रहे हो, 2:30 बज रहे हैं यार। ये हम और आपके बीच में अपने आप जो हास्य मिलता है, हास्य कलाकारों को, वो ऐसे ही मिलता है कि हम जो बोलते हैं, आप जो बोलते हैं, वही सुन रहे हैं, वही समझ रहे हैं। अब इसमें उन्होंने कहा अच्छा 2:30 बज रहा है यार, तुम गजब कर दिया, थोड़ी देर हो गया। जब काफी देर अपन बैठ जाते हैं तो फिर कोई कहेगा चलो यार भैया 3 बज गया, तो अपन को पता लग जाता 3 बज गए। काहे को अपन इतनी बड़ा वजन टांग कर चलें, और समय की कीमत अगर अपन ने समझी होती तो अपन यहाँ ये हास्य कलाकारी क्यों करते? फिर भी एक भाई साहब से मैंने पूछा कि भाई साहब कितना बजा है? कहले बज के 10 मिनट। मैंने सोचा कि चलो भाई बच के 10 मिनट, में समझ गया, अंदर ही अंदर में खुश हो गया कि व्यक्ति की आदत होती है कि अगर उसको कोई पहचान रहा है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मैं बहुत, मतलब मुझे ये खुशी हुई कि यार ये व्यक्ति जान गया कि मैं हास्य कलाकार हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि प्रोग्राम चालू होना है, भैया कितना बज गया? बोले बच के 20 मिनट। मैंने कहा यार लगता है ये भी हास्य कलाकार होगा, हमको छेड़ने के चक्कर में है, तो मुझे फिर बुरा नहीं लगा। थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहा अब प्रोग्राम शुरू कराया जाए। मैंने भाई साहब टाइम कितना हुआ? बच के 30 मिनट। हमने देखो यार मैं हास्य कलाकार जरूर हूँ किंतु मुझे गुस्सा भी आ जाती है। कहले क्यों, क्या बात है? अरे आप लगे हो बच के 10 मिनट, बच के 20 मिनट, बच के 30 मिनट, बताओ ना कितने बज। कहले भाई साहब मेरी गलती नहीं है, मेरी घड़ी का छोटा कांटा टूट गया है। बड़ा कांटा भर है, वो घूम रहा है, तो मैं बता रहा हूं आपको कि बच के 20 मिनट, बच के 30 मिनट, बच के 40। मैं, आप नाराज क्यों हो रहे? ये हास्य हमारे आपके बीच में मिल जाते हैं। कभी किसी का ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर को अगर आप एकदम, कभी कभी ऐसा माहौल आता कि लगातार ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, अब उसको अगर आप अधूरी बात करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे आदमी दुनिया से चला गया, और वो बात मैच भी करती जाती है। आप उसके घर भी बैठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाकई हो गया। जैसे उन्होंने कहा काव्या राजेश मिश्रा नहीं दिख रहे, वो तो गए। गए कब? लो आपको नहीं मालूम? सही में नहीं मालूम? अरे नहीं भगवान कसम बिल्कुल नहीं मालूम यार। कैसे कहा अब? अरे यार आज को समय कोई भरोसा है? है? आर्डर आ गो चले गए। अरे हमें तो पता ही नहीं, तो पर घर पे माता जी वगैरह है ना? अच्छा अच्छा अब माता जी के पास पहुंचे। अब व्यक्ति इतना झूठा हो गया है कि बाहर तक तो कहो हंसता रहे किंतु अगर किसी मरीज को देखने जाए तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते चेहरा बना लेगा, इतना बना लेगा कि इनसे बड़ा दुखी कोई है ही नहीं दुनिया में। किसी के यहाँ गमी में जाएगा तो बाहर तक हंसता रहेगा, घर के अंदर पहुंचते कहा हो गया था भैया? अरे कैसी अचानक? अरे यार भैया, अरे राम राम राम राम, कितने बच्चे हैं भैया? 2 बच्चे। ओहो हो मिसेज, अब मिसेज क्या 2 होंगी क्या? इतने तो गंभीर मत बनो, जबरन के नाटक इतना झूठ भरे तो नहीं करो कि एकदम पूछ बैठे कि मिसेज, अरे मिसेज भी तो एक ही होगी। चलो ये हो गया। अब यहाँ ट्रांसफर वाले उसमें आदमी बैठने गया, अब वो गया, अब देखिए संयोग बस, माता जी हाँ बेटा आओ, कहाँ है आज? सुनो हमें तो पता ही नहीं रहा। हाँ भैया हमें भी तो खुद ही अच्छा नहीं लग रहा, भैया नहीं है तो बिल्कुल इतना खराब लग रहा, हमें ऐसा लग रहा खाने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल ऐसा करता था आते ही साथ, अम्मा ए अम्मा तुम्हारे लाले सेव ले आए, तुम्हारे लाले अंगूर ले आए, आवाज है नहीं, ऐसा सूना लग रहा बिल्कुल। नहीं तो अम्मा उसमें क्या कर सकते बता? नहीं करने को तो अब आप लोग नेता आदमी हो, कुछ कर सकते?
अम्मा हम लोग नेता हैं, नीचे चलती ऊपर नहीं चल।

0: पाती हम लोगों की। अब ऊपर में उनको ये लग रहा है कि दिल्ली की बात कर रहे हैं, वो ऊपर कहने अम्मा हम लोगों की तो नीचे ही चलती है, ऊपर तो चलती नहीं। हाँ बेटा, ऊपर की पहुंच तो बड़ी अजीब ही होती है, किंतु अब चलो अब क्या करो, हम इंतजार कर रहे हैं उनका। अब पूरी विधा जो थी वो पूरी बदल गई। आदमी ये सोच रहा है कि वो ऊपर चले गए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि इनका ट्रांसफर हो गया, कभी किसी के अस्पताल में देखने जाओ। ये हास्य व्यंग आपको कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा, ये आपके समाज में मिलेगा। आप किसी को अस्पताल में देखने जाओ और मान लो वो डिस्चार्ज हो गया है, तो आपने काउंटर में पूछा, भाई साहब राजेश मिश्रा, हाँ वो तो गए कब? एक घंटा पहले। अरे राम राम राम राम, ओहो हो मट्टी कब जाएगी? नहीं नहीं मरे नहीं है यार, नहीं नहीं आप बोले ना गए, मतलब हॉस्पिटल से गए यार भैया। कभी आप अचानक घर में फोन करें, हेलो हाँ देखो यार मेरे को पासपोर्ट फोटो की जरूरत है, तो मैं भेज रहा हूँ चपरासी को, उसको पासपोर्ट फोटो दे देना। हाँ ठीक है। तो अब आप इंतजार करो पासपोर्ट फोटो का, अगर आपकी पत्नी को पासपोर्ट फोटो नहीं मिलती है तो तुरंत ग्रुप फोटो में से काट के पासपोर्ट बना के भेज देती। फिर आपने फोन लगाया, हेलो तुमने क्या फोटो भेज दी यार, क्या पेपर में देना है, गमी वाला समाचार देना है क्या कि राजेश मिश्रा नहीं रहे, ये तो इस टाइप की फोटो लग रही है। नहीं तो आपने बोला ना अर्जेंट चाहिए, अरे इतनी अर्जेंट नहीं चाहिए थी कि तुम ग्रुप में से काट के दे दो। हम और आपके बीच में ये हास्य हमेशा मिलता रहता है, हंसना मना है किंतु आप खोजिए, आप बस में जा रहे हैं तो वहां हास्य मिल जाता है, आपके बाजू में कोई बैठा हुआ है और आप उसको लगातार देखिए, अब एक व्यक्ति एक को देखा जा रहा, अब उसको शर्म लगी कि ये व्यक्ति मुझे क्यों देख रहा, थोड़ी देर इधर उधर देखता रहा, फिर उसने कहा भाई साहब क्या हो गया, आप एक घंटे से बैठे हो मुझे लगातार देखे जा रहे हो, बात क्या? नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात तो क्या है कि आपका और मेरी पत्नी का चेहरा बहुत मिलता है। कहने फालतू बात नहीं करना, नहीं नहीं कहने सही बोल रहा हूँ भैया, बिल्कुल गजब बताया आपको, अब क्या बोले यार, हम एक घंटे से देख रहे हैं आपको और एक घंटे से हम मतलब क्या बोले यार, बिल्कुल डिक्टू। कहने फालतू बात नहीं करना, मैं फेंक दूंगा तुमको बाहर, समझ गए? बोल रहे भाई साहब मैं फालतू नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सिर्फ मूछों का अंतर है, नहीं तो तुम बिल्कुल हमारी औरत के समान लगते हो। तो तुरंत वो व्यक्ति बोला, कहने मेरी मूछे कहाँ है? कहने मेरी औरत की मूछे है ना भैया।
1: हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
1: अरे हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
1: कोशिश कोई लाख करे कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
2: हंसना मना है।
0: लीजिए हंसना मना है इस कार्यक्रम के अंतर्गत कर्फ्यू या कभी भी 144 धारा जब भी देश में किसी भी कोने में लगती है तो हर अच्छे इंसान को तकलीफ होती है, और हमारे हिंदुस्तान की ये तासीर बिल्कुल नहीं है कि वो कर्फ्यू और 144 धारा पसंद कर सके, शायद कभी नहीं करेगा। खैर ये विषय अलग है, आपको उसमें भी मैं हास्य व्यंग दे रहा हूँ, इसे कहीं कोई अन्यथा ना ले कि किस प्रकार से हमें हास्य व्यंग उसमें मिल जाते हैं, दर्द में व्यंग, इसलिए हम मैसेज पहुँचाते हैं कि कभी आप तक ये बातें पहुँच जाएँ तो कर्फ्यू और दंगे फसादों से व्यक्ति दूर रहे। कर्फ्यू के दौरान में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है आम व्यक्ति की, और वो होती है पुलिस वालों से। लोग मुझसे पूछते हैं कि राजेश मिश्रा हिंदुस्तान में व्यंग में स्टेज की दुनिया में जितना आप पुलिस वालों के लिए सुनाते हैं और हमेशा पुलिस वालों को छेड़ते हैं, आखिर क्या बात है? और मैं हर प्रोग्राम में बताता हूँ कि मेरी एक बहन की शादी धोखे से एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब के साथ हो गई है, इसलिए तमाम पुलिस वाले हमारे जीजा होते हैं, मजाक के दौरान में मैं उल्टा सीधा

0: हजार लोगों को से बोल देता हूं, तो ये भी निवेदन कर लेता हूं कि मंच से वो लोग उतनी दूरी बनाए रखें। कर्फ्यू के दौरान में बहुत से लोग बाहर से आते हैं, जो लोकल लोगों को, शहर के नेताओं को, समाज सेवियों को नहीं पहचान पाते हैं। तो सबसे पहले तो जो कर्फ्यू पास मिलते हैं उसको लोग लगाते हैं और उनको सबसे पहले मोहल्ले में दिखाने निकलेंगे। कहा भाई कर्फ्यू पास मिला यार, एसपी साहब ने बुलाया था और कलेक्टर साहब ने बोला कि एकता की अपील के लिए आप लोगों को निकलना है। अब ये तो अपन बोल रहे हैं, किंतु सामने वाला सोच रहा साफ, लोगों को भी मालूम नहीं होगा एकता की अपील, पिताजी तो साथ में रहते नहीं है समाज में एकता की अपील के लिए निकलेंगे। ठीक ठीक, निकलो निकलो, आप तो निकल लो, ये वाली गली से निकलो, ये वाली तरफ बहुत ज्यादा तनाव है, जिस तरफ पुलिस थी उसी तरफ भाइयों ने भिजवा दिया। अब जो यहीं पहुंचे तो पुलिस ने, ऐश किधर, कर्फ्यू लगा हुआ? हाँ कर्फ्यू पास है। ये पास आपने, कर्फ्यू पास फाड़ दिया, आप जानते मैं कौन हूं? वीआईपी आदमी, दो तीन लठ मारो वीआईपी इसको। अरे ए, लठ मार दिया आपने, कैसा? अरे भाई साहब, अरे कैसा कर रहे हैं? मैं पिट गए। जी हाँ, ये वाला पास चलता है। पीठ में निशान आ गए आपके? हाँ, पीठ में लठ के निशान आ गए। हाँ तो ये वाला पास दिखाते हुए चले जाना घर में, बता देना मैं पिट चुका हूं, कर्फ्यू में बाहर मत निकलिए। सुबह सुबह पति पत्नी घूमने के लिए निकल पड़े, पुलिस वालों ने रोक लिया, ऐश किधर जा रहे हैं? पति बोला, मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक कर्फ्यू में? बहुत बढ़िया, इसको जेल भेजो, ये बड़े गोल में मॉर्निंग वॉक करेगा। पत्नी बोली, साथ में पत्नी भी थी, पत्नी तुरंत बोली,
1: नहीं इनको आप माफ कर दीजिए, हमने इनको मना भी किया था कि कर्फ्यू लगा हुआ है, किंतु ये माने नहीं।
0: देखो पत्नी कितनी समझदार है, आदमी कितना बेवकूफ, एक लपाड़ा मारो अपने पति को पुलिस बोल रही है कि पत्नी से कि पति को मारो। पत्नी बोली,
1: नहीं हम इनको नहीं मारेंगे।
0: नहीं मारोगी तो ये जेल जाएगा, या तो एक चाटा मार दो तो घर ले जाओ, चाटा नहीं मारोगी तो हम इसको जेल भेज देंगे, आप अपने घर जाइए।
1: नहीं देखिए आप प्लीज।
0: अब पति खिसक, मार दो नो
1: नहीं हम नहीं मारेंगे।
0: अरे लफड़ा कराओगे क्या?
1: नहीं हम नहीं मारेंगे।
0: मार दो ना, तुमसे बोल रहे हैं।
1: नहीं ना,
0: अकेले में पटकती रहोगी कुछ लोग हमारे पास आए, बोले राजेश मिश्रा जी, आपको नेता लोग भी चाहते हैं, कलाकार भी हो आप, और आपको अधिकारी भी चाहते हैं। तो मैंने कहा, भैया मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, कर्फ्यू में क्या पिटवाना चाहते हो आप? कहने नहीं भैया, ऐसा था कि आप हमारे लिए, हम लोगों के यहाँ क्या है कि लेटरिन नहीं है घर में, हम लोग सब सुलभ शौचालय जाते हैं, तो आप एक काम करवा दीजिए, सुबह शाम का हम लोगों के लिए पास बनवा दीजिए और एक टाइम का इमरजेंसी बनवा दीजिए। तो मैंने कहा, भैया पास बनवा दें? कहले हाँ, क्या है उधर पुलिस की पॉइंट ड्यूटी लग गई है, हम लोग इधर से जाते हैं पुलिस रगेद देती है, तो आप लोग पकड़ में नहीं आते? नहीं पकड़ में तो आ सकते हैं, किंतु जो ही वो पुलिस पास में आती है हम लोग दौड़ते हैं और वो पीछे भागते हैं, जो ही वो पास में आते हैं तो वो फिसल जाते हैं। अरे मैंने कहा, भाई साहब आपकी व्यवस्था जल्दी करें, नहीं तो मैं भी फिसल जाऊंगा। उन व्यक्तियों की समस्या हल नहीं हुई, उनमें से एक बेचारा सुबह सुबह नाली में बाहर बैठे हुआ था। सुनने में आपको जरूर अजीब लग रहा होगा, किंतु जब आप पूरी बात ये सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कर्फ्यू, दंगे फसाद, इसमें आम गरीब आदमी कितना परेशान होता है कि वो बाहर नाली में बैठे ही था कि पुलिस आ गई, अरे तेरे मालूम नहीं है कर्फ्यू लगा है? अरे साहब हमको क्या मालूम, इसमें भी कर्फ्यू लगा। बहस कर रहा, मारो इसको लट।

0: उठो, मार डालो साहब। अबे तो ना उठे।
1: जो ही व्यक्ति फुर्सत हुआ पुलिस ने कहा चलो कहने कपड़े पहन के आ जाएं। अपने यहाँ का आदमी बड़ा होशियार ऊपर चला गया, नीचे पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, ऊपर से झांका, क्या बात है, नीचे उतरो। नीचे नहीं उतरते, क्यों? नीचे कर्फ्यू लगा है।
2: और अब एक और हंसोड़, विनय जैन।
3: एक ऐसा आइटम सुनाने जा रहा हूँ जो कि व्यंग है। एक नेताजी जिनका की तगिया कलाम था, बात बात में कहा करते थे कि राजनीति हो गई। हर बात में वो कहा करते थे कि अरे साहब राजनीति हो गई। एक बार आप तमाम लोग भी जान लें, स्वर्ग और नरक में जाने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। जो लोग हम और आप अपनी अपनी जीवन लीला समाप्त करके ऊपर पहुंचते हैं, तो जो इंटरव्यू में पास होता है वो स्वर्ग में जाता है, जो फेल होता है वो नरक में जाता है। और जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें जो नेताजी हैं उनका नंबर 2-3 लोगों के बाद आने वाला है। इंटरव्यू चालू है, सबसे पहले पहले कैंडिडेट को बुलाया गया, इंटरव्यू चालू है। कैंडिडेट नंबर 1, नमस्ते साहब, कहाँ से आए? साहब इंडिया से आए हैं। हाँ इंडिया से आए हो, इंडिया की स्पेलिंग जानते हो? साहब आई पहले आता है, फिर एन आता है, फिर डी आता है, फिर आई आता है, फिर ए आता है, INDIA, मतलब इंडिया। बड़े शाबाश, स्वर्ग में जाओ। दूसरे को बुलाया, हाँ साहब कहाँ से? फ्रॉम जापान। जापान की स्पेलिंग जानते हो? साहब JAPAN। बड़े शाबाश, तुम भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, चित्रगुप्त साहब ने फौरन सवाल किया, बोले भैया तुम चेकोस्लोवाकिया स्पेलिंग बताओ। अब चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग नेताजी मिस्टेक कर गए, बोले नरक में जाओ। नेताजी फौरन चिल्लाए, गुरु राजनीति हो गई, सबसे सरल पूछे, हमसे बस कठिन पूछे, इंटरव्यू एक बार फिर से होना चाहिए, नहीं तो हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा देंगे। एक बार फिर से इंटरव्यू दोबारा करवाया गया, एक बार फिर से इंडिया वाले को बुलाया गया और पूछा गया, हाँ बोले साहब एक बात बताइए, ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? बोले साहब दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप सन 1903 में आया था। बोले शाबाश, आप स्वर्ग में जाइए। दूसरे को बुलाया, जापान वाले को, बोले साहब आप बताइए दक्षिण अफ्रीका के भूकंप में कितने लोग लगभग मारे गए थे? बोले साहब लगभग 19,998 लोग मारे गए थे। बोले शाबाश, आप भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया तो फौरन उनसे सवाल किया गया, बोले साहब दक्षिण अफ्रीका के इस भूकंप में और ज्वालामुखी के फटने में जितने लोग मारे गए थे सबका नाम बताओ। नेताजी वहाँ भी मिस्टेक कर गए, बोले साहब नरक में जाओ। नेताजी फिर चिल्लाए कि गुरु राजनीति हो गई, साहब पॉलिटिक्स हो गई, सबसे सरल पूछा जाता है, हमसे ही कठिन सवाल किया जाता है, तो इसके लिए एक बार फिर से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग गए। लोगों ने यह तय किया कि साहब ठीक है इंटरव्यू फिर से होना चाहिए, लेकिन इस बार ऊपर से आदेश हो गया कि इस बार इंटरव्यू आखिरी होगा, बिल्कुल अंतिम होगा, फाइनल होगा और लिखित में होगा, राइटिंग में एग्जाम होगा। जो सही लिख के बताएगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो गलत लिखेगा वो नरक में जाएगा, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। नेताजी कहने लगे, हाउ? इंडिया वाले को बुलाया, बोले साहब लिख के बताइए, कौवा काँव काँव, कौवा काँव काँव। बोले शाबाश, स्वर्ग में जाओ। जापान वाले को बुलाया, बोले साहब लिखिए, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। बोले शाबाश, बिल्कुल सही लिखा है, आप भी स्वर्ग में जाइए। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, नेताजी को देखते ही से फौरन सवाल किया, बोले साहब आप लिखिए, घोड़ा।
4: हाँ तो दोस्तों, हंसने हंसाने का यह सिलसिला अभी आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है का भाग 13। आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया। ये महोत्सव लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में यह महोत्सव आयोजित हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में सौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। आज विश्व युवा कौशल दिवस है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आज का युग ज्ञान, तकनीक और कौशल का युग है। विकसित भारत के निर्माण का संकल्प तभी साकार होगा जब हमारे युवा हुनर